अच्छा, वो कौन से ऐसे हिंदी फिल्मी सितारे हैं, ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट मेल एक्टर, वो कौन से ऐसे स्टार हैं जिनका वो कह सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोगों को सबसे ज्यादा पसंद है? मतलब ऐसा नहीं कि वो बहुत कंसिस्टेंटली वीडियोस और फोटोज डाल रहे हैं, लेकिन जब आते हैं ना ताबड़तोड़ एंट्री करते हैं वो ऐसे बैचलर, ओए होए, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कह सकते हैं ऐसे द मोस्ट वांटेड बैचलर कौन से हैं? सलमान खान यार, रिसेंटली उनका जो इंस्टाग्राम है वो 76 मिलियन क्रॉस कर गया। जब लिस्ट निकाली गई तो नंबर वन पर तो सलमान खान निकल कर आए एंड नंबर टू पे हमारे मिस्टर खिलाड़ी अक्षय कुमार भी निकल कर आए और नंबर थ्री मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन टॉप टू पे तो ये दोनों बने हुए हैं। By the way, आप कौन से एक्टर को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो करना? Do let us know in the comment section. RJ अनुपर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है। Don't go anywhere मेरी जान, आ रही हूँ मैं just in a short while.

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085657।

0: आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है, मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।

0: यू गॉट अ कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन टकाटक जोश में रहो।
2: आज के टाइम पर इतने ज्यादा वीडियो इफेक्ट्स हैं, इतने ज्यादा एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं कि उनसे कोई भी चीजें पॉसिबल दिखाई जा सकती है। मतलब कई बार रियलिटी दिखाई जाती है और हमें ऐसा लगता है कि नहीं नहीं नहीं नहीं ये तो एडिटिंग का कमाल है। मतलब एडिटिंग पर हमारा भरोसा ज्यादा है ना कि रियलिटी पर। सो मैं आज नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपको याद दिलाना चाहेगी कि भाई 70s 80s के दौरान ये सब पॉसिबल बिल्कुल नहीं था। मतलब जो होता था रियल टाइम में होता था, उसे बार बार शूट करके ना कहीं इम्प्लीमेंट कर दिया जाता था, आंखों का इल्यूजन बना दिया जाता था, लेकिन कर दिया जाता था। एंड आपको पता है जो पहला स्टंट है बिना किसी एडिटिंग के अजय देवगन ने कब इम्प्लीमेंट किया था, याद है आपको? हाँ, देखो आज भी अगर लड़के बाइक पर स्टंट कर देते हैं ना तो हम कह देते हैं कि ज्यादा अपने आप को अजय देवगन मत समझ, क्योंकि उन्होंने फूल और कांटे मूवी में दो बाइक्स पर एक साथ स्प्लिट होकर खड़े होने वाला करतब दिखाया था और वो कोई एडिटिंग का नहीं बल्कि रियल टाइम स्टंट का ना कमाल था। सो रिसेंटली अजय देवगन ने उसी स्टंट को याद करते हुए बोला कि वो मेरा लाइफ का पहला स्टंट था और सबसे डरावना स्टंट था। मैं आज इतनी हिम्मत नहीं रखता हूँ और ना तब रखता था, पर कर लिया था। तब तो ऐसी एडिटिंग स्ट्रिंग्स हेल्पिंग हैंड भी नहीं थे, जो था वही था। तो देखिए अपने टाइम पे एक्टर्स ने इतनी मेहनत करी है कि आज लोग उन्हें पसंद करते हैं यार। हाँ, आज अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है। सो डोंट गो एनीवेयर मेरी जान, आती हूँ मैं जस्ट इन अ शॉर्ट वाइल।

0: सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो एक केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जी जी, जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

0: बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।

0: और सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
2: जोश में रहो।
3: होता है होता है होता है, मतलब ऐसा होता है यार। मूवी से पहले का जो ट्रेलर है ना, वो अगर मसालेदार नहीं हुआ तो मूवी का सक्सेस रेट कम हो जाता है। अगर ट्रेलर बहुत अच्छा है, बहुत प्रॉमिसिंग है, तो लोग पूरी मूवी देखने पहुंच ही जाते हैं। अब वहां पर डिसअपॉइंटमेंट बाद में होता है तो झेल लिया जाएगा यार, खर्चा तो हो गया। सो हेलो, हाय, मैं आज नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है। एंड द पॉइंट इज, किसी भी बड़ी सी चीज की छोटी सी झलक कितनी इम्पोर्टेंट है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट? एनीवेज, अब तो सिर्फ ट्रेलर ही नहीं, पूरी की पूरी मूवी हम देख चुके हैं। धुरंधर मूवी का पहला पार्ट और देखते ही देखते दूसरा पार्ट भी, राइट? एनीवेज, इस मूवी का तीसरा पार्ट भी बन सकता है। हल्का सा सरप्राइज जो है वो दे दिया गया है प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स की तरफ से। देखते हैं ये धुरंधर मूवी की धुरंधर गिरी कितनी दूर तक जाती है। अच्छा ठीक है, आप क्विकली मुझे मैसेज करके बताओ, वो कौन से ऐसे मूवी पार्ट्स हैं जिनका, या फिर मूवीज हैं डेफिनेटली, जिनका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सारे पार्ट आपको बड़े पसंद आए, है ना? 9151896 मेरा नंबर, व्हाट्सएप या टेक्स्ट कुछ भी कर सकते हो आप।

0: स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
2: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
1: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई, और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
2: तो सिंगापुर, गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज, मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंगआउट।

0: We are Radio Masti 24/7 live, keeping you connected Bollywood style anywhere, anytime.
1: जी हाँ भाई बहनों, झुमरी तलिया से मुन्नी की रिक्वेस्ट आई है। रफ्त रफ्त देखो, आंख मेरी लड़ी है।

0: स्टोरी में इमोशन है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है।
1: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर।
2: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन टकाटक जोश में रहो।
3: यू नो व्हाट, अगर सारे एक्टर्स एक्टिंग छोड़ के फ्लॉन्ट गिरी की क्लासेस शुरू करें तो इनका बिजनेस दिन दुनी रात चौगनी के हिसाब से सक्सेसफुल हो सकता है। पूछिए क्यों? क्योंकि कितनी अच्छी तरीके से ये फ्लॉन्ट करते हैं। मतलब 2 का 4 अमाउंट एक बार के लिए फिक्स डिपॉजिट में हो ना हो, इनकी बातों में जरूर हो जाता है। सो एनीवेज, मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ, एंड द पॉइंट इज कि इस बार किसने फ्लॉन्ट किया है तो बता दूं, आमिर खान के बेटे जुनैद खान, जो चेहरे से बहुत मासूम लगते हैं और होंगे भी, यार किसको पता। हाँ भाई, इन्होंने साफ साफ कह दिया है, मैंने अभी तक महाराजा मूवी करी है, एक दिन मूवी करी है, कुछ और भी बहुत सारे इन्होंने प्रोजेक्ट्स करने शुरू कर दिए हैं रीजनल सिनेमा से जुड़े हुए, वो चाहे गुजराती ही इंडस्ट्री क्यों ना हो। तो जुनैद खान ने बोल दिया है कि मैं अपने डैड से अपनी स्क्रिप्ट कभी डिस्कस नहीं करता, मैं अपने डिसीजंस पे ही रहता हूँ क्या सही है और क्या नहीं। अरे बाबा भाई, मिस्टर परफेक्ट के बेटे भी मिस्टर परफेक्ट ना हुए तो क्या ही फायदा। आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है, डोंट गो एनीवेयर मेरी जान।

0: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ।

You know what? मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब कोई चीज में ये निकल कर आता है कि ये फायदा सिर्फ लड़कियों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। अरे अरे अरे, मेरी तो आत्मा ठंडी हो जाती है, मेरा खून बढ़ जाता है जब मुझे पता चलता है कि अच्छा, इतने % डिस्काउंट सिर्फ लड़कियों के लिए, फीमेल कोटा लगा हुआ है। ओ भाई, मजा ही आ गया। सो हेलो, हाय, मैं आरजे अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ बनी हुई है। एंड द पॉइंट इज कि ये जो फीमेल कैटेगरी का बेनिफिट है, पहले तो कभी मिलता नहीं था, लेकिन अब जब मिल रहा है तो इसका फायदा क्यों ना उठाए। हाँ ये जो जेंडर बायस्ड वाली डिबेट है ना, मैं तो इसमें पढ़ती नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ फीमेल सेंट्रिक बातें करने लगती हूँ जब मुझे फायदा दिखता है। खैर, मैं आपको बता दूँ, रिसेंटली दुबई में ये फीमेल वाला जो फायदा है वो कहीं ना कहीं से दिखाई दे गया है। रिसेंटली दुबई के एक बीच को एक्सक्लूसिवली मंडेज एंड वेंसडेज के लिए फीमेल सेंट्रिक कर दिया गया है। राइट, उसमें फीमेल स्टाफ होगा और फीमेल्स की ही एंट्री होगी, नाइट स्विमिंग से लेकर हर तरह के जो भी एडवेंचर एक्टिविटीज होंगी उसमें फीमेल्स को फुल सिक्योरिटी दी जाएगी। कितना अच्छा है और कितना अच्छा है। हाँ सो बीच बीच में रीजंस निकल कर आने लगते हैं कि दुबई क्यों जाना चाहिए। राइट, आरजे अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।

Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता।

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर।
1: नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर,
2: नुपुर।
3: आपको क्या लगा था ये किसी से डर जाएंगे? नहीं नहीं नहीं नहीं, सिर्फ आप और मैं हैं जो मार्क्स कम आने पर निराश हो जाते हैं और दोबारा से उसका सेकेंड थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट देने से डर जाते हैं। वरना कुछ लोग हैं जैसे ही मार्क्स कम आते हैं ना तो डबल मेहनत शुरू कर देते हैं। वो मैं एग्जाम नहीं मूवीज की बात कर रही हूँ। सो हेलो हाय, मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। एंड मुझे ऐसा लगता है कि किसी के अंदर हिम्मत है

तो वो है अपने अक्षय कुमार। उनकी मूवीज का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पिछले कुछ वक्त में बहुत अच्छा नहीं निकल कर आया है। मतलब जितने लेवल के वो काम करते हैं उतने लेवल तक तो वो पहुंचा भी नहीं है। बट स्टिल अक्षय कुमार निराश होके क्या घर पे बैठ गए? ना बाबा ना, वो तो बल्कि मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बैठे हुए हैं। राइट, इन्होंने ऑलरेडी एक फनी कैरेक्टर के साथ ऑफकोर्स कॉमेडी जॉनर में मूवी साइन कर ली है अनीस बज्मी के साथ। और आप बिलीव नहीं करेंगे, सुनने में आ रहा है कि वो मूवी दिसंबर 2026 में रिलीज भी हो सकती है। इतना क्विकली नहीं, वो आसान भाषा में क्या कहते हैं, झटपट वाला काम अक्षय कुमार ही कर सकते हैं। मेरी चार आरजे अनुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है। झटपट बड़े सारे प्यारे प्यारे गाने आपका इंतजार कर रहे हैं।

0: सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
2: जोश में रहो।
3: अगर आप सिंगापुर में रहते हैं और आपकी फैन फॉलोइंग या फिर फॉलोअर्स लिस्ट में इंडिया के बहुत सारे लोग हैं, राइट? तो आप मेरे कहने पर एक वीडियो बना लो, आपके व्यूज बहुत अच्छे आ जाएंगे। सो हेलो, हाय, मैं आरजे अनुपम सी मॉर्निंग शो पर आपके साथ। देखो, रिसेंटली सिंगापुर की एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी जिसमें किसी इंडियन ने ऐसी वीडियो डाली थी कि रात के ब्ला ब्ला ब्ला 2:30 या 3 बजे, राइट, वो लड़की अकेले साइकिलिंग के लिए रोड पर निकली है और वो एक्चुअली में सेफ फील कर रही है। क्यों? क्योंकि सिंगापुर का एनवायरनमेंट ही ऐसा है कि आपको सेफ फील करवा देता है। रात में, दिन में, सुबह में, कितने बजे हैं ये मैटर नहीं करता, आपका दिल क्या कर रहा है वो मैटर करता है। इस तरह का ट्रेंड सिर्फ सिंगापुर में ही नहीं, अक्रॉस द वर्ल्ड जिन जिन कंट्रीज में ऐसा फील होता आया है, वहां वहां के लोगों ने, स्पेशली इंडियंस लोगों ने ये वीडियोस बनाई हैं और बड़ी वायरल गई हैं, राइट? इवन इंडिया में हम अलग तरह से सब्जियां खरीदने जाते हैं, उनकी क्या कॉस्टिंग होती है, और सिंगापुर में जब हम लिटिल इंडिया चले जाते हैं और वहां पे अपना स्टफ वन बाय वन खुद खरीदते हैं तो क्या कॉस्टिंग होती है, इसके कंपेरिजन पर भी आप वीडियो बना सकते हैं। अभी एक्चुअली मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रही थी और मैंने कुछ ऐसी वीडियोस देख ली, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट मैं आपको एक सजेशन दूं। मैं खुद भी इम्प्लीमेंट करूंगी, मीनवाइल आप तो ट्राई कीजिए। आरजे अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है, डोंट गो एनीवेयर मेरी जान।

0: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वी आर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है, तो 1 kg आटा,
2: हाँ जी जी,
1: 1/2 kg मसूर दाल,
2: जी जी,
1: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
2: जी जी।
1: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
2: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
1: क्या जी?
2: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो, और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
1: वाजी, क्या बात जी।
2: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: सुन टकाटक। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। जोश में रहो।
1: देखो ऐसे ही बात किया करो, ऐसी बात किया करो कि आप न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन जाओ। हाँ ऐसी बात नहीं करनी है कि साइड में एक कॉलम बस आपका निकला और आप निकल गए आ गए। काम ऐसा कीजिए कि चार लोगों को पता चल जाए। दैट्स द होल तरीका जिसपे बॉलीवुड का ग्लैम वर्ल्ड काम करता है। सो हेलो हाय, मैं आरजे अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। एंड द पॉइंट इज, रिसेंटली अमीषा पटेल ने वंस अगेन पब्लिकली बोल दिया है कि सुनो गदर मूवी का तीसरा पार्ट आएगा, बिल्कुल आएगा, और ऐसा आएगा कि सबको चौंका जाएगा। और बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत कम ऐसी फीमेल्स हैं और मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही इकलौती फीमेल हूं जिसने बहुत ही लिमिटेड मूवी में काम किया, और जिस भी मूवी में काम किया उसने करोड़ का बिजनेस किया है। अरे भाई एक्चुअली फ्लॉन्टिंग का सिनोनिम बनता जा रहा है अमीषा पटेल, राइट? चलिए ऑन दिस नोट मैं आरजे नूपुर एक बात फ्लॉन्ट करना चाहेगी कि जितने बेहतरीन जबरदस्त अमेजिंग वाले गाने आपको सिंगापुर में अक्रॉस द नेशन आपको मिलते रहते हैं वो है रेडियो मसी 24/7 लाइव, है ना? चलो इसी बात पे मैं आरजे नूपुर साइनिंग ऑफ, मुलाकात होगी बहुत जल्द। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, अपने का ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।

0: पहुंचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: 呀，哎呀。
1: Your musty music cafe is open. Freshly brewed beats

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: Shows don't just play, they stay with you. And when our listeners

0: Ask for more? We bring them back. Encore shows by popular demand. Relive the music, the moments, the magic. Only on Radio Masti 24/7. Check the app menu for Encore show timings.
1: Radio Masti 24/7 Live, a part of Masti Media Network Singapore.
2: हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
0: नो नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर

0: आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक

0: Ja.
1: Your Musty Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
2: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
0: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है, टेंशन नहीं लेने का। टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त। बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्रा लाती है आरजे अंतरा, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7। Take an hour off the world. Let unplugged melodies soothe your soul and spark your imagination. Musti Unplugged, the indie hour of pure musical bliss.
3: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
4: Check it out.
5: मेरे करण अर्जुन आएंगे?
1: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेस आएंगे। हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंगआउट।
2: Your musty music cafe is open. Freshly brewed beats

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
1: आई लव यू रसना।
0: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards only on Radio Mercy 24/7 Live.

0: प्रेम, निशा,
1: राहुल,
0: अंजलि, चीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s nostalgia का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s नेक्स्ट डे।
2: हेलो हेलो, वेलकम, नमस्ते, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर स्वागत है आप सभी का एक ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ। आपका 90s वाला समय शुरू होता है अब। मैं हूं आपके 90s वाली अंतरा, एंड यस यू गेस्ट दैट राइट। वैसे इसमें गेस्ट करने की कोई जरूरत ही नहीं है, एवरी थर्सडे जो है हम आ जाते हैं लेकर 90s वाला समा बांधने, व्हिच इज मस्ती 90s मिक्स टेप। जस्ट इन केस अगर आप ऑन कोर्स सुन रहे हो तो यस आई नो इट्स अ सैटरडे, बट ये जो है आप रिपीट सुन रहे हो। व्हाट, कम बैक टू द प्रेजेंट एंड लेट्स रिवाइंड एंड गो टू द 90s। करेक्ट, वो जगह जहां मेमोरीज HD नहीं होती थी पर फिर भी परफेक्टली क्लियर होती है। आज जरा सा इसी तरह से जैसे हर बार करते हैं, आंखों को कर दीजिए बंद एंड इमेजिन करिए गर्मी की वो दोपहर, कूलर की घर घर घर वो साउंड, टीवी पे दूरदर्शन या केबल का रैंडम म्यूजिक काउंटडाउन, किचन से तड़के वाली वो स्मेल, कॉर्नर में वो रखा हुआ ट्रांसपेरेंट कैसेट का रैक। 90s वाला जो हमारा समय था शाइनी नहीं था पर उसमें वार्म्थ और कनेक्ट बहुत ज्यादा थी। वॉल्स पे स्लाइटली फेडेड से पेंट, टीवी पर वो एम्ब्रॉयडर्ड कवर, स्कूल बैग्स पे कार्टून के स्टिकर्स और हर घर में एक ड्रॉर जो ऑफिशियली मिसलेनियस होता था वैसे आज भी है क्योंकि आदतें गई नहीं है ना। फोन का वायर उलझा हुआ, रिमोट का बैक कवर मिसिंग, रेनी सीजन में वेट सॉक्स और एग्जाम के पहले ब्लू इंक वाले फिंगर्स। पर फिर भी हम बोर्ड कम होते थे क्योंकि एंटरटेनमेंट सिर्फ स्क्रीन पे नहीं होता था, ऑब्जर्वेशन में होता था। विंडो के बाहर देखना भी एक्टिविटी जो है माना जा सकता था। कैसेट रिवाइंड करना भी एक्साइटमेंट होता था और मूवी पोस्टर्स देख के ही फिल्म का मूड बन जाया करता था। बस यही सारे बातें करते करते, चाहे कुमार सानू दा की आवाज में गाने हो या अलका याग्निक जी की वो सॉफ्टनेस हो, नदीम श्रवण का रोमांस हो या AR रहमान का फ्रेश साउंड हो, पूरा इंडिया जो है लिटरली साउंड ट्रैक पे ही चल रहा था 90s में। और इसीलिए ये मिक्स टेप हमारा जो मस्ती 90s मिक्स टेप है, ये शो सिर्फ नॉस्टैल्जिया के लिए नहीं है, ये एक इमोशनल हमारा रिवाइंड बटन है। तो आप तैयार हो? क्योंकि मैं डेफिनेटली यहाँ पर तैयार हूँ। सबसे बेस्ट पार्ट बताऊं? नहीं, बेस्ट पार्ट है दैट आप और हम एक ही पेज पे है, 90s वाले पेज पे। लेट्स बिगिन द 90s वाली पार्टी ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जी जी, जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: प्रेम, निशा, राहुल, अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s मिक्स टेप।
1: मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, या फिर आई लव यू रसना, या फिर वो जलेबी। भाई किचन किंग हो या गरम मसाला, या फिर विको टर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक, वॉशिंग पाउडर निर्मा, दूध सी सफेदी निर्मा से आए धारा धारा शुद्ध धारा, दूध दूध दूध दूध पियो ग्लास। लाइक When was the last time आपने current ads को इस तरह से back to back जो है आपको इस तरह मुजबानी इनके जो है बिल्कुल tracks याद होंगे। नहीं ना, नहीं ना, this is 90s का जादू। Welcome back Radio Masti 24/7 Live, मैं हूँ अंतरा आपके साथ और यहाँ पर चल रहा है मस्ती 90s mixtape। So 90s में advertisement सिर्फ ads नहीं होते थे, public property हुआ करते थे। आज ads जो है हम skip कर देते हैं, ठीक है, जहाँ पर भी जाते हैं तब ads repeat किए जाते थे। स्कूल में, गली में, बस में, हर जगह कोई ना कोई सडनली बोल देता था मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है। और पूरे क्राउड में ऑटोमेटिकली रिप्लाई आता था मेलोडी खाओ खुद चैन जाओ। मतलब एड्स ऑफिशियली कॉन्वर्सेशन का लैंग्वेज बन चुके थे 90s में। और सिर्फ मेलोडी ही नहीं, वॉशिंग पाउडर, निर्मा एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ये सब सिर्फ जिंगल्स नहीं थे, 90s का बैकग्राउंड स्कोर थे। एंड द बेस्ट पार्ट, हम प्रोडक्ट से पहले उनके डायलॉग्स याद रखते थे। कोई बच्चा जो है सडनली यू नो शाहरुख खान स्टाइल में ये दिल मांगे मोर बोल देता और पूरा क्लासरूम यू नो बस्टेड आउट इन लाफ्टर। 90s का एडवर्टाइजिंग एरा बहुत ही यूनिक था क्योंकि उसमें ओवर स्मार्टनेस नहीं थी, कैचनेस थी। सिंपल लाइंस, सिंपल ट्यून्स, पर डायरेक्ट मेमोरी में एकदम फिट, नहीं टैटू टैटू। और टीवी पे एड्स आते वक्त भी चैनल इमीडिएटली चेंज नहीं किया करते थे, और स्किप करने का तो ऑफ कोर्स ऑप्शन ही नहीं था। कभी कभी तो वो एड्स का वेट किया करते थे, स्पेशली वो जो फनी या फिर वो जो म्यूजिकल वाले होते थे ना। और ऑनेस्टली 90s के एड्स ने हमें जिंगल्स याद करना सिखाया। लिरिक्स भूल जाओ पर एड की लाइंस ओहो परफेक्टली याद है। एक और इंटरेस्टिंग थिंग जो है, अगर आपने नोटिस करिए कि नहीं, टेल मी अबाउट इट। आज भी अगर कोई यू नो ऐसा बोले एंड समबडी वॉन्ट्स टू कंप्लीट that sentence, क्या आप कर सकते हो 90s का कोई भी एड? क्योंकि वो सिर्फ मार्केटिंग नहीं थी, कलेक्टिव मेमोरी थी। और शायद इसीलिए 90s का टीवी इतना पर्सनल फील होता था क्योंकि उसमें एड्स भी फैमिली के मेंबर के जैसे लगता था, इतना ज्यादा कि आज भी ये एक रिश्तेदार है 90s वाला जो हमें बड़ा पसंद है। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर फिलहाल यहाँ पर चलते हैं एक एड ब्रेक पे, नहीं 90s वाले म्यूजिकल ब्रेक पे, एंड उसके बाद वापस आती हूँ मैं 90s वाली आपकी अंतरा ऑन मस्ती 90s मिक्स टेप, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.
1: Check it out.
2: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
3: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085-6577।
4: Not all music is loud. Some songs just sneak in. What makes you smile? Hum along and feel good. Welcome to Musty Unplugged, your indie acoustic playground on Radio Musty 24/7.

0: पेंसिल से कसरत की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना।
1: टेक्नोलॉजी वगैरह की बात करें तो इतना ज़्यादा एडवांस हो गया है दैट एट टाइम्स आप मूवी के सेट्स में ये सारे स्ट्रगल्स जो है शायद नहीं उतना फेस कर रहा होगा किसी ने। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अंतरा आपके साथ चल रहा है पे मस्ती 90s मिक्स टेप। एंड भाई बारिश वाले गाने 90s में दे वर एक्चुअली टफर देन दे लुक्ड। भाई 90s बॉलीवुड का जो है एक परमानेंट इमोशन था बारिश वाले गाने जो हार्मोन को हमारे एलिवेट किया करते थे, क्योंकि हमें एक तो आइडिया ही नहीं था ना कि ये हार्मोन होते क्या है और ये एलिवेट हो क्यों रहे हैं जस्ट बिकॉज हीरो हीरोइन बारिश में जो है डांस कर रहे हैं। वेल एनीवेज, हीरो व्हाइट शर्ट में, हीरोइन की शिफॉन की साड़ी, स्लो मोशन म्यूजिक, फुल रोमांस मोड, और हम टीवी पे देख के ये सोचते थे कि यार कितना ड्रीमी है। मतलब आपने पता नहीं कभी ये ट्राई किया हो या नहीं किया हो, बट जब कभी भी मतलब जो भी बहुत बड़े बॉलीवुड फैंस वगैरह थे हम लोग, जब बारिश होती थी ना उस टाइम पे बाहर जाकर हम भी कोशिश करते थे कि वैसा कुछ करें, बट हमारे में फील ऐसा कुछ भी नहीं आता था। सो 90s के बहुत सारे आइकॉनिक रेन सॉन्ग्स वी ऑल नो दैट, लेकिन एक्चुअली फ्रीजिंग विंटर नाइट्स में कई सारे ऐसे बारिश वाले गाने जो हैं वो रिकॉर्ड किए गए थे, शूट किए गए थे। आर्टिफिशियल रेन मशीन्स मंगाई गई, कोल्ड वाटर टैंक्स मंगाए गए, एंड एक्टर्स को सामने जो है सेम शॉट बार बार रिपीट करना। जस्ट इमेजिन रात के 2 बजे, ठीक है, टेम्परेचर ऑलरेडी लो और ऊपर से आइस कोल्ड वाटर कंटिन्यूसली वहां पे गिर रहा है आपके ऊपर, फिर भी स्क्रीन पे एक्सप्रेशन प्योर रोमांस। हाउ डिड दे डू इट आई हैव नो आइडिया, बट लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट आइकॉनिक बारिश वाला गाना एवर, मोहरा मूवी का टिप टिप बरसा पानी। उसको शूट करते वक्त आई एम श्योर मैंने कभी ना कभी आपको बताया होगा, बट रवीना टंडन हैड हाई फीवर, फिर भी जो है उन्होंने पूरा का पूरा जो ये गाना, भाई कौन मतलब कौन इमेजिन करेगा वो गाना देख के कि फीवर था उनको। बट वेल, रोमांस का जो है पूरा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऐसा हुआ करता था, ठीक है। ऑनेस्टली 90s के रेन सॉन्ग्स का मैजिक ही अलग था अगर देखा जाए तो। वाटर रिफ्लेक्शंस, येलो स्ट्रीट लाइट, वो गीले बालों का स्लो मोशन एंड बैकग्राउंड में मेलोडी हैवी म्यूजिक। आज भी पहली बारिश आते ही ब्रेन जो है ऑटोमेटिकली किसी 90s के गाने पर जो है जाके शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि बॉलीवुड ने बारिश को सिर्फ वेदर नहीं बनाया, इमोशन बना दिया। और उस वक्त VFX या फैंसी एडिटिंग भी बिल्कुल नहीं थी, तो एक्टर्स भी जेन्युइनली उनको ना डांस करना पड़ता था, तो चाहे वो स्लिपरी फ्लोर्स हो, फ्रीजिंग वाटर हो, नथिंग डूइंग, हैव टू डू इट, हैव टू डू इट। आज बिहाइंड द सीन्स देखते हैं तो समझ आता है कि 90s के रेन सॉन्ग सिर्फ ग्लैमरस नहीं थे, फिजिकली भी काफी काफी एग्जॉस्टिंग थे, पर स्क्रीन पे बस मैजिक ही मैजिक। इसीलिए 90s सिनेमा इतना आज भी टाइमलेस लगता है, क्योंकि उसमें एफर्ट जरूर हिडन था, इमोशन पूरा का पूरा विजिबल हुआ करता था। वैसे विजिबल तो यहाँ पर भी मेरा इमोशन आपको आएगा जब मैं ऑफकोर्स ये टिप टिप बरसा पानी वाला गाना, जो अब अगर मैंने प्ले नहीं किया इतनी सारी माहौल बना के बाद तो फिर तो गलत हो जाएगा ना, ऐसा तो मैं होने ही नहीं दे सकती। रेडियो 24/7 लाइव पर स्टे ट्यून्ड।

क्या ही याद आ गया मुझे, क्या ही बताऊं और क्या नहीं बताऊं। रेडियो बस्ती 24/7 लाइव ऑन ट्रॉप के साथ और यहाँ पे चल रहा है मस्ती 90s मिक्स स्टेप। भाई 90s के स्कूल प्रोजेक्ट्स याद है आपको? देखिए टॉपिक कुछ भी हो, वाटर पोल्यूशन, सोलर सिस्टम, माय फेवरेट लीडर, व्हाटएवर इट इज, असली फोकस कहाँ होता था? मेरा तो होता था कि इसको इतना खूबसूरत बना दो कि वो उनकी कंटेंट पे नजर ही ना जाए, बिकॉज खूबसूरत बनाना वाज माय फोर्टे थिंग। एंड उसमें मुझे मजा भी आता था कि फाइल को, तो बेसिकली हम लोग फाइल्स में बनाते थे, और उसको इतना डेकोरेट कर दो और इतने मेरे एक्साइटमेंट पॉइंट्स कि मुझे अलग अलग कलर के पेन्स जो है वो यूज करने को मिलेंगे, एंड हेडिंग जो हमने ग्रीन पेन से अगर लिखी है तो उसके नीचे का अंडरलाइन रेड पेन से होगा, और उसके नीचे का कॉन्टेंट जो है हम लिखेंगे किसमें, ब्लू कलर के पेन से या ब्लैक कलर के पेन से। उसके साथ साथ जो है रिसर्च करने में क्या मजे आते थे, नहीं लाइब्रेरी में जाओ, बिकॉज ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग अबाउट 90s, उस टाइम पे गूगल का कोई काम ही नहीं था और ऐसे कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी, तो हमारे इस तरह से रिसर्चर्स के क्या जरिए होते थे कि या तो मतलब किसी का पुराना जो है टेक्स्ट बुक वगैरह कहीं पे कुछ मिल गया, बट प्रॉब्लम ये होती थी कि भाई हमको कराना होता था, उसमें से उनका फोटो चाहिए होता था, तो क्या करें, फोटो कॉपी कराने पहुंच जाते थे कि भाई इसकी फोटो कॉपी करा के उन बुक्स में से जो है पिक्चर्स काट काट के जो है हमारे प्रोजेक्ट के फाइल्स में यूं लगाए जाते थे। एक तो वो होता था कि जो प्रोजेक्ट के अंदर जाया करता था, और उसकी एक स्टैंडर्ड जो है फाइल्स आया करती थी कि जिसमें प्रोजेक्ट बनाए, स्पेशली दिस यूज टू हैपन कि समर वेकेशन में जा रहे हैं, बच्चों का जो है जिंदगी में पूरी की पूरी ऐश बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, उनको दे दो समर प्रोजेक्ट, और मोस्टली हर टीचर ही कोई ना कोई अपना प्रोजेक्ट था ही देता था। हम भी उतने ही ज़्यादा स्मार्ट थे, हम कहते थे कि हम पहले घूम वूम आए, एंड स्पेशली मैं तो एकदम एंड मोमेंट पे जाते थे, और मम्मी वो प्रोजेक्ट रह गया है पापा, वो उसका ना सामान लाना है, फिर उसके बाद पहले तो पड़ती थी डांट, ठीक है, और उसके बाद ऑफकोर्स लाया जाता था सामान की करना तो है ही, फिर ये याद रखना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि बाकी किसी में मार्क्स मिले ना मिले, प्रोजेक्ट सुंदर बना दो, क्या पता उसी में अच्छे मार्क्स मिल जाए, कहीं ना कहीं तो तुमको मतलब कवर करना ही पड़ता है। तो वंस वी डिड दैट, देन वो जो बाहर उसको बहुत ब्यूटिफुली अपना क्रिएटिविटी यूज़ करके सजाना एंड एवरीथिंग, या दिस इज़ हाउ आई डेल्ट विद द होल थिंग, बट दैट ऑल्सो ओपन्ड अप सो मेनी डोर्स, एंड दैट इज़ वेयर 90s के सबका जो इमेजिनेशन है केम इन टू प्ले एंड केम इन टू एक्शन, एंड वी स्टिल यूज दैट बिट ऑफ आर्स। नहीं, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर यू ही चलती रहेंगी 90s की बातें, क्योंकि आप सुन रहे हैं मस्ती 90s मिक्स टेप ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। चांदनी

जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें। समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। योर डोज ऑफ 90s नॉस्टैल्जिया, मस्ती 90s मिक्सटेप विद आपकी 90s वाली अंतरा, थर्सडेज 11 AM onwards only on रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: जी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें

0: असल से कसरत की रील सुलझाना, क्रश का नाम हार्ट पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना।
1: थोड़ी देर पहले हम लोग प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे ना, उन फाइल्स की। अक्सर वहाँ पे ऐसी चीज़ होती थी कि नए नए स्टेशनरी आइटम्स आपके घर वाले आपको तभी खरीद के देते थे जब आपकी पढ़ाई से वो रिलेटेड हो। नहीं नहीं, सच अ 90s थिंग। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऑन ट्रैप के साथ मस्ती 90s मिक्स टेप आप बिल्कुल सुन रहे हो, एंड दैट इज सो वेरी ट्रू, स्पेशली इन द मिडिल क्लास फैमिलीज। ठीक है, वहाँ पर बजटिंग का एक बड़ा इशू होता था, जो बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आता था, लेकिन फिर भी स्टेशनरी शॉप में जाके स्टेंसिल खरीद कर कि भाई प्रोजेक्ट में मेरे को ना ऐसे एकदम सुंदर वाला जो है, जब मैं हेडिंग लिखूं तो ऐसे मैंने देखा हुआ है उसको, एंड देन यू थिंक दैट दिस इज द ओनली वे टू गेट दैट स्टेंसिल इन योर अकाउंट, तो बस आपने ऐसे करके कर लिया। इट्स दोस थिंग्स, ओके। जैसे एक टप्पा एंड आउट, दैट इज ऑल्सो सच अ 90s थिंग, यू नो, रिमेंबर दोस टेनिस बॉल। ठीक है, 90s का क्रिकेट ICC रूल्स पे बिल्कुल नहीं चलता था भाई, गली के रूल्स पे चलता था वो, और हर कॉलोनी का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता था। कहीं पे वन टप्पा और हैंड आउट, कहीं पे डायरेक्ट टेरेस पे गया तो 6+ आउट, कहीं पे स्कूटर पे अगर लग गया तो जाके हो जाएंगे तुम्हारे 2 रन। मतलब गेम से ज्यादा टाइम और रूल्स डिस्कस करने में इतना, मतलब बातें चल रही है तो चली रही है, आधा तो टाइम उधर ही निकल जाता था। और टेनिस बॉल क्रिकेट का एटमॉस्फेयर, ओह माय गॉड, एक प्लास्टिक की बैट, एक स्लाइटली सी फटी हुई सी टेनिस बॉल, गरीब सी। और जो है ईंटों से हम लोग स्टंप्स बनाते थे उस टाइम पे, पूरा कॉन्फिडेंस कि हम नेक्स्ट सचिन, तो मतलब व्हाट लड़का लड़की डूड एवरीवन। सो पिच कभी गली बन जाती थी, कभी किसी का पार्किंग एरिया, कभी बिल्डिंग के नीचे एक वो छोटा सा जगह होता था। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात होती थी एडजस्टमेंट। अब किसी से, मतलब आप खेल रहे हैं वहां पे क्रिकेट, तो किसी की कार आ गई तो साइड आंटी निकली, तो भाई अरे बॉल रोक दे, रुक जा। एंड बैटिंग ऑर्डर पे तो भाई पॉलिटिक्स के लेवल की डिबेटें चलती थी कि मैं पहले आया था, तू लास्ट मैच में भी ओपनर था, नहीं मेरा बैट है, मैं जा रहा हूँ, तुम लोग खेलते रहो। तो मतलब बैट जिसका उसके, जी हजूरी तब से चली ही आ रही है। That's life. So 90s का क्रिकेट ऑर्गेनाइज नहीं था, काफी इन्वेंटिव था, रिसोर्सेज लिमिटेड थे, पर इमेजिनेशन अनलिमिटेड एज यूजुअल। भाई अगर बॉल नाली में चली गई है तो गेम पॉज, नेवर अंकल अगर गुस्सा हो गए है तो टेम्पररी मैच सस्पेंशन, और रेनी सीजन में तो स्पेशल रबर बॉल वर्जन, क्योंकि वेट टेनिस बॉल काफी भारी हो जाती थी, मुश्किल हो जाता था उससे खेलना। आज गेमिंग कॉन्सोल्स रियलिस्टिक ग्राफिक्स देते हैं, तब इमेजिनेशन रियलिज्म क्रिएट करती थी। एंड ऑनेस्टली गली क्रिकेट ने सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं सिखाया, नेगोशिएशन, टीम वर्क, आर्ग्यूमेंट को हैंडल करना, क्विक रूल मेकिंग भी उसने हमें सिखाया, और हर बच्चा सीक्रेटली कमेंट्री भी करता था। सचिन सॉइल एकदम मार दिया उसने यहां से छक्का, क्योंकि 90s में क्रिकेट जो है सिर्फ टीवी पे नहीं होता था मेरे दोस्त, हर गली में होता था। और इसीलिए आज भी जब कोई बोलता है ना वन टिप, एक टिप पे आउट, हाँ एक टिप पे, अंदर ऐसा पूरा का पूरा बचपन जो है इंस्टेंटली एक्टिव हो जाता है। नहीं, स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये जो यादें हैं ये इसी तरह से एक्टिव रहेंगी आपके साथ ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085-6577।
2: Shows don't just play, they stay with you. And when our listeners ask for more, we bring them back. Encore shows by popular demand. Relive the music, the moments, the magic. Only on Radio Masti 24/7. Check the app menu for Encore show timings.
3: Radio Masti 24/7 Live, a part of Masti Media Network Singapore.

आईवी ट्रिप मस्ती 90s मिक्स टेप। I have to mention Shanali का नाम यहाँ पर रेडियो बस्ती 24/7 लाइव में हूँ अंतराब के साथ, यहाँ पे चल रहा है मस्ती 90s मिक्स टेप। तो मुझे पता लगा कि जब सैटरडे को पिछले वाले जो है ऑनकोर चल रहा होगा एंड शनाली वॉज ट्यून्ड इन, एंड आई एम श्योर दैट कई बार होता है कि आप थर्सडे को नहीं ट्यून इन कर पाते हैं, तो दैट इज़ वाई वी स्टार्टेड विद द ऑनकोर सैटरडे सुबह 8 बजे से जो है 11 बजे तक इसी शो का आप रिपीट सुन सकते हैं। सो शी रोड कि भाई अंतरा मैं तुम्हारे साथ हूँ एंड I can completely imagine and relate to whatever you are saying, and I know that Shanali, like personally, मैं बहुत सारे आप लोगों को जानती हूँ जो बिल्कुल मेरे साथ, you know, इस 90s पेज पे we all are like at the same level and we know what we are talking about. जब मैं बोलती हूँ कि बात फोन पे बात करते करते कॉर्ड को जो है ऐसे उंगलियों पे घुमाना, because last time I was talking कि अगर क्रश से बात हो जाती थी उसका हेलो भी सुन लेते थे तो सारा दिन हम बेवकूफ़ों की तरह विदाउट एनी रीजन स्माइल करते हुए जो है घूमते फिरते रहते थे, एंड शी फाउंड इट वेरी वेरी रिलेटेबल, बट दैट इज़ वेरी ट्रू भाई। कॉन्वर्सेशंस हैड फिजिकल जेस्टर्स इन द 90s. 90s के फोन कॉल्स सिर्फ बातें बिल्कुल भी नहीं होती थी, पूरा बॉडी लैंग्वेज होता था दोस्त लैंडलाइन पे बात करते वक्त। ये हैबिट आई थिंक बहुत ही ज्यादा कॉमन थी, इसीलिए सारे वो जितने भी तारे हैं ना वो ऐसे उलझी उलझी कर्ली कॉर्ड एकदम ऐसे करके बिल्कुल पड़ी रहती थी, बिकॉज फोन का वो कर्ली कॉर्ड फिंगर पे लपेटना ऑटोमेटिकली बिना सोचे हुए, ओ माय गॉड। कॉन्वर्सेशन चाहे वो सीरियस हो या क्रश कॉल पे हो, फिंगर क्वाइटली कॉर्ड पे जो है रैप करती रहती थी, कभी टाइट स्पाइरल, कभी लूज सा लूप, कभी पूरा कॉर्ड उलझ ही जाए। फनी थिंग, कॉल खत्म होने के बाद ही रियलाइज होता था कि ये क्या कर दिया। सो 90s के लैंडलाइन कॉल्स स्टेशनरी, नाना कैसे ऐसे कैसे लोग बात करते करते जो है खिड़की तक चले जाते थे, कभी यू नो दीवार पे ऐसे लीन करके बात कर रहे हैं, कॉर्ड स्ट्रेच कर देते थे पूरे, कभी कभी हॉल तक जाकर बात कर रहे हैं, और कभी नीचे बैठ गए है ना बात करते हुए, और घर वालों का पीछे से आता था भाई ऐसा है कि तुम तोड़ दो, तुम आज ही तोड़ दो, खत्म कर दो सब कुछ, चीजें वेस्ट कर तुमको आता है। बट 90s में कॉन्वर्सेशन सिर्फ वॉइस नहीं होती थी, प्रेजेंस भी होती थी, फोन का वेट फील होता था, रिसीवर का वार्म्थ फील होता था, और कॉर्ड का टेक्सचर भी पार्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन बन जाता था। आजकल क्या है, वायरलेस ईयरबड्स है, हेडफोन्स है, तब टैंगल्ड वायर्स भी इमोशनल लगते थे, एंड लैंडलाइन पे बात करने का एक्साइटमेंट वो तो अलग ही कि फोन रिंग पे सब मतलब भागते हुए जाए कि मेरे लिए होगा, मेरे लिए होगा। नो नोटिफिकेशंस, नो स्क्रॉलिंग, डिस्ट्रैक्शंस नहीं, सिर्फ आवाज और वो स्पेशल स्पाइरल कॉर्ड। हाय, वो 90s के दिन ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जी जी, जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम ggmart, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
3: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
2: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
3: तो सिंगापुर, गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज, मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
2: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंगआउट।

दोस्तों से कसरत की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना। भाई 90s के बच्चों को टेक्नोलॉजी यूज करना आए या ना आए, टेक्नोलॉजी के साथ एक्सपेरिमेंट करना डेफिनेटली उन्हें आता था। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऑन ट्रैप के साथ चल रहा है क्या क्या क्या अरे मस्ती 90s मिक्स टेप रे। और ये जो एक्सपेरिमेंट का बिगेस्ट विक्टिम कौन था बताओ, गेस कर सकते हो आप? घर का टीवी, दैट इज राइट। भाई पुराने टीवीज के साइड या फ्रंट में वो छोटे छोटे बटन्स या नॉब्स हुआ करते थे, इफ यू रिमेंबर, ब्राइटनेस, कलर और कॉन्ट्रास्ट का वर्टिकल होल्ड, एंड क्यूरियोसिटी उसको देखकर ही कि वहां पे बटन है या नॉब है, क्या ही होता होगा अगर इसको हम घुमा दें। सो एक बटन घुमाया तो सडनली पूरा का पूरा स्क्रीन जो है वो रेड हो गया, दूसरा प्रेस किया तो पूरा का पूरा स्क्रीन ग्रीन हो गया, कभी फेसेस इतने ब्राइट हो जाते थे कि सभी एलियंस जैसे लगने लगे, फिर होता था पैनिक मोड शुरू की ये तो हमने एक्सपेरिमेंट कर लिया, अब जो डांट पड़ेगी वो खाएगा कौन? क्योंकि रिमोट से नहीं होता था सब कुछ, टीवी पे जाके फिजिकली सेटिंग्स को एडजस्ट करनी पड़ती थी। एंड ऑनेस्टली 90s किड्स को बटन्स प्रेस करने का एक अलग ही कॉन्फिडेंस था कि क्या होगा देखते, क्यूरियोसिटी इतनी ज्यादा, आई थिंक या इट्स बट इट्स अ गुड थिंग राइट। कभी वॉल्यूम फुल ब्लास्ट, कभी चैनल्स ही गायब हो गए, कभी पिक्चर वो टिल्ट हो गई, और फिर उसके बाद किसने छेड़ा टीवी को, वही नहीं सुन रहा था हमको, बाकी सब तो ठीक ही था। सो 90s में गैजेट्स सील्ड मिस्ट्री बॉक्सेस नहीं लगते थे, टच एंड ट्राई ऑब्जेक्ट ज्यादा लगते थे, हम उन्हें एक्सप्लोर करते थे, समझने की कोशिश करते थे, आज सेटिंग्स हिडन मेन्यूज में होती हैं, एंड तब सब ओपनली एक्सेसिबल था, एंड टीवी ट्यूनिंग का भी एक फुल आर्ट हुआ करता था, कलर परफेक्ट करना है, एंटीना एडजस्ट करना है, पिक्चर शार्प बनाना है, जैसे घर में अनऑफिशियल इंजीनियर्स रहते हो कि ये तो फिगर आउट करना ही पड़ेगा। एंड फनी बात ये है कि कभी कभी गलती से सेटिंग्स बेटर भी हो जाया करती थी, इफ यू रिमेंबर, नहीं मेरे साथ तो कई बार ऐसे हुआ है, एंड फिर हम रियलाइज करते थे कि ये हमें पहले क्यों नहीं पता, ये तो और भी अच्छा साफ आ रहा है। सो एक्सीडेंटल जीनियस भी हमें 90s में इस तरह से डिस्कवरी हो जाया करती थी। सो 90s टेक्नोलॉजी ज्यादा पर्सनल फील हुआ करती थी क्योंकि उसको ऑपरेट नहीं करते थे, उसके साथ एक रिश्ता बना लिया करते थे। और आज जब भी कोई ये ऐसे दिखता है ना, इस तरह की कोई चीज दिखती है नॉब टाइप की, तो अंदर वो अंदर का एक्सपेरिमेंट वाला साइंटिस्ट जो इंस्टेंटली कि ये अगर मैं घुमा दूं तो फिर क्या हो जाएगा, क्या होता होगा इस पे, मैं बता रही हूँ कि मैं अगर आज मुझसे आप पूछोगे ना, मुझे अपने फोन के 36,000 चीजें हैं, मतलब मेरे पास है, आई नो अ लॉट अबाउट इट, बट स्टिल देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स आई डोंट नॉट नो अबाउट इट, बट या दैट्स दैट। आई थिंक टाइम्स आर मोर कॉम्प्लिकेटेड, 90s का टाइम बहुत सिंपल था, वो दिन भी क्या दिन थे, इसीलिए हम बात करते हैं कि भाई ये उन दिनों की बात है जब टाइम्स वर सो वेरी सिंपल। ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है, तो 1 kg आटा,
2: हाँ जी जी,
1: 1/2 kg मसूर दाल,
2: जी जी,
1: काजू, किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
2: जी जी।
1: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
2: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर।
1: क्या जी?
2: जी जी, जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो, और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
1: वाजी, क्या बात जी।
2: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
1: प्रेम, निशा, राहुल, अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पर फील करने वाले दिन। 90s nostalgia का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s नेक्स्ट डे। विंड मशीन्स एंड रोमांस, उसका भी एक अलग ही मजा था। ऑन रेडियो मस्ती 24/7 अलाइव, 90s के दौर में हम लोग अभी बिल्कुल डाइव कर चुके हैं डीप इनसाइड। 90s बॉलीवुड का एक यूनिवर्सल लॉ हुआ करता था कि हीरो की एंट्री हो या कोई रोमांटिक गाना हो, बाल जो है वो जरूर उड़ने चाहिए, वो भी परफेक्टली। हीरो का स्लो मोशन अगर वो एंट्री लेगा, शर्ट जो है वो हल्का सा फ्लटर करेगा हवा की वजह से, ऑफकोर्स हीरोइन के जो बाल है वो जुल्फे जो है वो हवा में बिल्कुल नाचती हुई लहराएंगी, और हम सोचते थे यार इतनी परफेक्ट हवा आ कहां से रही है, मतलब कहां चल रही है, क्योंकि हमारे साथ तो ऐसा नहीं होता, हम तो चंडालिका बन जाती है जब भी हवा चलती है। बट द आंसर इज द जॉइंट विंड मशीन्स। यस, 90s फिल्म के सेट्स पे ह्यूज इंडस्ट्रियल फैंस यूज किया करते थे ये लोग, कभी आउटडोर कभी इनडोर, सिर्फ उस परफेक्ट सिनेमैटिक हवा के लिए। एंड द फनी थिंग इज, कभी कभी सेट कंप्लीटली एक क्लोज्ड रूम होता था, पर स्क्रीन पे फुल फील आता था जैसे स्विट्जरलैंड की वादियों में ऐसी हवाएं चल रही हो। एंड 90s के डायरेक्टर्स को जो है फ्लाइंग हेयर, यानी कि ये उड़ते हुए जुल्फे, बहुत ही ज्यादा उनकी फेवरेट चीज थी, स्पेशली जब उनको कुछ रोमांस या रोमांटिक गाना कुछ ऐसा दिखाना हो, क्योंकि उस टाइम पे मूवमेंट ही ग्लैमर फील हुआ करता था। अगर हेयर स्टैटिक है तो इमोशन हाफ हो जाएगा, और इमेजिन एक्टर्स का स्ट्रगल, राइट? एक साइड जायंट फैन, ओके, दूसरी साइड लाइट्स की वो जो गर्मी होती है, एंड बीच में उसमें उनको लिपसिंक भी करना है, एक्सप्रेशन भी मेंटेन करना है, कपड़े भी सही रखने हैं, मतलब सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। कभी दुपट्टा रॉन्ग डायरेक्शन में उड़ जाता था, कभी हीरो के बाल आंखों में जाया करते थे, फिर रीटेक लिया जाता था, कोरियोग्राफी भी हवा के अकॉर्डिंग जो है वो एडजस्ट की जाती थी। सो हेयर फ्लिप का टाइमिंग, दुपट्टा उस टाइम पे जाके ऐसे उस मोमेंट पे कैच करना, स्लो मोशन पे इस वक्त पे टर्न करना है, बिल्कुल हवा के हिसाब से सब कुछ प्लान्ड। ऑनेस्टली 90s रोमांस का विजुअल टेक्सचर ही अलग हुआ करता था, सॉफ्ट लाइटिंग, हवा का इफेक्ट, रेन के रिफ्लेक्शंस बैकग्राउंड में, कुमार सानू या उदित नारायण या अलका याग्निक की आवाज, आज VFX एंड डिजिटल एनहांसमेंट है, तब रियल फैंस लिटरली फुल स्पीड पे चल रहे होते थे, एंड इसीलिए 90s के गाने इतने हमें ड्रीमी लगते हैं, क्योंकि उनमें आर्टिफिशियल परफेक्शन कम और फिजिकल एफर्ट ज्यादा था। कभी ट्राई करना हवा चल रही हो ना तो ऐसी वाली फील, एकदम 90s वाली फील में, है ना। मैंने तो कोशिश भी कर रखी है अपना जो है वीडियो रिकॉर्ड करने की, बट कभी भी वैसा वाला फील आता ही नहीं है कि बस हवा जुल्फे एकदम परफेक्टली उड़ रही हो, क्यों नहीं होता हमसे। एनीवेज, ये सवाल कभी, और फिलहाल गानों की ओर चलते हैं 90s वाले ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें, समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 AM onwards, only on Radio Mercy 24/7
1: Live. मुझे कहना कहना तुझसे है कहना। मुझे रहना रहना तेरे दिल में रहना।

पेंसिल से कसरत की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना। द थ्रिल ऑफ राइटिंग अ चिट डेस्क में आगे वाले रो से पीछे उसको पास करने का जो मजा है कोई 90s वालों से पूछे। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर वेलकम बैक। जी हाँ बिल्कुल, हम लोग मस्ती 90s मिक्स टेप साथ साथ में हमने ये सफर तय किया है और आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। एंड 90s के क्लासरूम्स में, क्योंकि ऑफकोर्स वाईफाई तो था नहीं, पर कम्युनिकेशन जो है उसमें कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। और उस कम्युनिकेशन का किंग था फोल्डेड वो पेपर के चिट, छोटा सा पेपर का पीस, परफेक्ट वो फोल्ड्स और अंदर दुनिया भर की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, मैथ्स का होमवर्क क्या है, लंच में क्या लाए हो, पीटी पीरियड या जीरो पीरियड होगा क्या, और कभी कभी तो क्रश रिलेटेड ब्रेकिंग न्यूज भी उसमें भी पास की जाती थी। सब कुछ साइलेंस जो है के साथ सर्कुलेट होता था लास्ट बेंच से फर्स्ट बेंच तक। एक स्टूडेंट पास करेगा, दूसरा कैजुअली नोटबुक के नीचे स्लाइड करेगा, टीचर्स को लगता था क्लास फुल अटेंटिव है कुछ तो लगता था, बट कुछ एकदम शाणे थे, उनको समझ में आता था कि चल क्या रहा है, चल क्या रहा है। सो 90s में मैसेजिंग इंस्टेंट बिल्कुल नहीं थी, बट रिस्की काफी सारा थी कि चिट पकड़ी गई तो ऑफिशियली वो डिजास्टर ही बिल्कुल उसको घोषित कर दिया जाएगा। व्हाट इज देयर इन योर हैंड, है ना, सुना सुना अगर आपको लग रहा है तो हाँ वही हो तुम पूरी क्लास का जो है एकदम धड़कने ऐसी बढ़ जाती थी, और कभी तो इनोसेंट मैसेज भी काफी काफी डेंजरस सा लगता था। और फोल्डेड चिट का डिजाइन भी काफी इंपॉर्टेंट होता था, छोटे छोटे ट्राइंगल का फोल्ड या फिर मिनी स्क्वायर या फिर वो सीक्रेट लेयर्ड फोल्ड, जैसे स्पाई कम्युनिकेशन चल रहा हो वहां पे। एंड द बेस्ट पार्ट वाज दैट मैसेज रिसीव होते ही इमीडिएट रिएक्शन कंट्रोल करना, है ना, कि आप हंस नहीं सकते ओपनली, बस हेड डाउन करके ऐसे मुंह चबा के एकदम अपना जो है इमोशंस को कंट्रोल करने पड़ते हैं। आज चैट्स डिसअपीयर हो जाती है, ठीक है, तब चिट्स नोटबुक्स के अंदर महीनों महीनों तक, मतलब कहीं आपने साल दो साल बाद भी खोल लिया तो मिल जाए वहां पे। और हैंडराइटिंग भी इंस्टेंटली पहचान जाते थे कि ये उसका लिखा हुआ है। एंड इसीलिए 90s के स्कूल के फ्रेंडशिप्स भी इतनी पर्सनल लगती है, क्योंकि कम्युनिकेशन लिटरली इट वॉज हैंड रिटन, द इंक, द फोल्ड्स, द पैनिक, द टाइमिंग, सब कुछ इन्वॉल्व। एंड ऑनेस्टली लास्ट बेंच का उनके वो फोल्डेड पेपर्स सिर्फ मैसेजेस नहीं थे, मिनी मेमोरीज थे। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर 90s की मेमोरीज को ताजा करता हुआ हमारा ये शो मस्ती 90s मिक्स टेप ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए GGMartOnline.com से अल्फांसो आम।

लाइफ मैं मंत्र आपके साथ और यहाँ पे चल रहा है मस्ती 90s मिक्स टेप टिरिंग टिरिंग। भाई अब ये कॉन्फिडेंस था विदाउट चाइंस का कि क्या था, बट 90s के जो है जो भी उस दौर में बड़ा हुआ है उस टाइम के बच्चे ना इंजीनियर्स नहीं थे, पर कॉन्फिडेंस फुल इंजीनियर लेवल का था। ठीक है, स्पेशली जैसे आपका वीडियो कैसेट प्लेयर हो गया या फिर आपका जो है ये वीडियो गेम्स के जो है उसके अगर आपको कॉन्सोल्स याद हो जस्ट इन केस, सो निंटेंडो टाइप के कॉन्सोल्स या वीडियो गेम का सिस्टम्स अगर इफ यू जस्ट ट्राई टू स्केच दैट एंड रिमेंबर, उसके ना येलो कार्ट्रिजेस हुआ करते थे, मारियो, कॉन्ट्रा, रोड फाइटर, और सब कुछ तब तक मस्त चल रहा होता था जब तक सडनली स्क्रीन फ्रीज ना हो जाए। ठीक है, फिर ऑफिशियल रिपेयर प्रोसेस शुरू किया जाता था कि भाई पहले तो कार्ट्रिज निकालो और उसमें जोर से यानी कि फूंक मारो, जैसे हवा नहीं टेक्निकल एक्सपर्टीज डाल रहे हो कि हवा में हमारे जादू है, हम एक बार नहीं दो तीन बार उसमें फूंक मारेंगे, फिर कार्ट्रिज को थोड़ा सा ऐसे जो भी पहना हुआ है टी शर्ट से ऐसे रब कर देंगे, वापस लगाएंगे और अगर गेम चल गया, बाय गॉड की कसम ऐसी साइंटिस्ट वाली फीलिंग आया करती थी ना कि देखा मैंने ठीक कर दिया। आई हैव सीन माई फादर ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग विद द वीडियो कैसेट प्लेयर, या तो वो स्प्रे वो लंबी नोजल वाला उससे क्लीन करते थे या फिर उसमें ना उसमें भी फूंक मारते थे कि अगर कोई डस्ट हो तो फूंक से वो उड़ जाए और समथिंग लाइक दैट। द थिंग विद द 90s kids was कि किसी को एक्चुअल साइंस नहीं पता थी कि डस्ट मैकेनिज्म जो है हमें पता ही हो, कुछ भी नहीं ऐसा कि सर्किटरी आ गई हो, कुछ भी ऐसा नहीं था, पर पूरी जनरेशन कन्विंस थी फूक का नाम ही रिपेयर है और रिपेयर का नाम ही फूक है, फूक दो और ऑनेस्टली हाफ टाइम तो वो काम भी कर जाता था एंड यू नो दैट राइट। तो कॉन्फिडेंस और भी हमारा बढ़ जाया करता था। गेमिंग का सेटअप भी कितना डिफरेंट था, टीवी के सामने फ्लोर पे बैठना, वायर्स का टैंगल हो जाना, रिमोट लाइक कंट्रोलर्स और साइड में भाई बहनों की लड़ाई कि अब मेरी बारी अब मेरी बारी, गेम ओवर का मतलब ना ना ना रीस्टार्ट नहीं पूरा लेवल रीस्टार्ट करना पड़ता था। एंड कार्ट्रिजेस का एक्सचेंज कल्चर उस टाइम पे कि अगर तू मुझे ये 9,999 ये वाला तू मेरे वाला ले ले मैं तेरे वाला ले लूं, हाय राम, है ना। कभी कभी तो सच्चे में लगता है कि अगर ये डाउनलोड वाला सिस्टम होता तो कितना ही आसान हो जाता, बट नहीं यार इसका अपना ही मैजिक था कि तू दे मेरा ले। एंड उसके बाद भाई हमने तो वीडियो पार्लर में जा जा के खेले हैं मोस्टली क्योंकि हमें खरीद के नहीं दिया था ये जो थे ये मारियो कॉन्ट्रा वाले गेम ऐसा वाला, क्या ही अब तो क्या ही कर सकते हैं, बट देन याद तो कर सकते हैं, है ना। इतनी खूबसूरत मेमोरीज हैं यार। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर रही मेरे साथ।

0: ये रात तो अपनी है पर एक ख्याल किसका है। ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है।
1: मुझे चांद पे ले चलो।
0: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बनके रात के हम सफर हर रोज 11 बजे ट्यून इन टू
1: रात अकेली है।
2: जोश में रहो।
3: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

पेंसिल से कसेट की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना। नाइन्टीज में फ्रीडम हैड एक्चुअली टू व्हील्स। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव क्या चल रहा है, मस्ती 90s मिक्स टेप, दैट्स राइट। मैं हूँ कौन, 90s वाली यात्रा आपके साथ। भाई 90s के में फ्रीडम का मतलब जो होता था, जिसके लिए पासपोर्ट बिल्कुल नहीं चाहिए होता था, साइकिल। एंड उस फ्रीडम का हाईएस्ट लेवल कैसे मिलता था, पेडल्स पे खड़े होकर फुल स्पीड पे चलाना। याद आया ओ माय गॉड, क्या मेन कैरेक्टर फीलिंग आती थी उसको करने में, स्पेशली अगर आप ढलान पे जो है रोड पे हो। ओ हो सीट पे प्रॉपरली बैठना एकदम ऐसा बोरिंग लगता था, रियल स्टाइल तो भाई स्टैंडिंग पेडल मोड हुआ करता था। हैंडल को टाइट पकड़ो, बॉडी को स्लाइटली फॉरवर्ड बेंड करो और हवा डायरेक्टली फेस पर। उस वक्त यार जेन्युइनली ऐसा लगता था हम किसी बॉलीवुड के मोंटाज में है। और साइकिल भी नॉर्मल ट्रांसपोर्ट नहीं होती थी, एक तरह की आइडेंटिटी हुआ करती थी, किसी की एटलस, किसी की BSA, SLR, किसी की वो ब्राइट स्टिकर्स वाली साइकिल, और एक्सेसरीज, यू नो, बेल अलग से, यू नो, स्टाइल की, हैंडल पे रिबन, या फिर वो जो स्पोक्स होते थे उसमें कलरफुल प्लास्टिक के क्लिप्स। सो 90s में साइकिल राइड सिर्फ ट्रैवलिंग नहीं था, एडवेंचर था। स्कूल जा रहे हैं, फ्रेंड्स के घर जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, सडनली ऐसा लगता था कि मम्मी काम दो ना, मैं साइकिल से जाके लेके आऊंगी सब कुछ साइकिल पे। स्पीड कॉम्पिटिशन तो मैं अपनी और स्पीड की क्या ही बात करूँ किसकी साइकिल तेज कर, ये तब से आई थिंक चालू हो गया था मेरा, दैट आई हैव बीन ऑलवेज इन लव विद द टू व्हीलर्स एवर, दैट्स लाइक माई फॉर एवर लव। बट ये स्टैंडिंग पेडल मुझे जो याद आया, ओहो हो, और ब्रेक्स कभी काम करते थे, कभी हम दुआ पे चलते थे, पर कॉन्फिडेंस बिल्कुल फुल ऑन था। एंड ऑनेस्टली 90s के बच्चे रोड्स को मैप्स की तरह छपे हुए होते थे कि कहाँ पे ढलान है, कहाँ पे स्पीड ब्रेकर है, कहाँ पे एक शार्प टर्न है। आज GPS में डायरेक्शंस देखते थे, तब आई थिंक मसल मेमोरी ज़्यादा थी। अनदर क्लासिक थिंग, साइकिल चलाते वक्त फिल्मी इमेजिनेशन, कभी कभी खुद को ना हीरो हीरोइन समझ रहे होते थे कि कभी यू नो अजय देवगन का एक्शन मोड पे चले गए हैं, ठीक है, बैकग्राउंड के अपने दिमाग में खुद ही म्यूजिक चल रहा है, ठीक है, कुछ भी कर रहे हैं। इसीलिए 90s की साइकिल की मेमोरीज इतनी इमोशनल लग रही है, क्योंकि उनमें पेट्रोल थोड़ी ना था, पूरी फ्रीडम चल रही है हमारी। और अभी तक मैं बात कर रही हूँ ना, बात करते करते मेरे जहन में, मतलब आई कैन लिटरली विजुअलाइज दैट दिस, ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग। 90s के वो अमेजिंग दिन।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर,
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाजी क्या बात जी,
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर।
2: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
3: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ।
4: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
0: प्रेम, निशा, राहुल, अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s nostalgia का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s next day.
5: I know, ये वक्त वो वाला है, आ ही गया, बट क्या ही कर सकते हैं। नहीं, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अंतरा आपके साथ थी और मस्ती 90s मिक्स टेप। भाई कितना कुछ, सब कुछ था। आई थिंक आई कम्प्लीटली एंजॉयड आज का जो है एपिसोड एंड द जर्नी की मेलोडी, खाओ खुद जान जाओ, वो वाले एड्स, बारिश में शूट होते हुए वो फ्रीजिंग वाले सॉन्ग्स, एंड देन प्रोजेक्ट फाइल्स के ऊपर वो ओवर डेकोरेटेड हमारे बॉर्डर्स, एक ठप्पा और तुम आउट, उसके क्रिकेट रूल्स, देन लैंडलाइन का कॉर्ड पे फिंगर पे अपना घुमाना, एंड देन टीवी के कलर बटन्स को दबा के एलियन उसको बना देना, फोल्डेड क्लासरूम चिट्स, देन द वीडियो गेम्स के कार्ट्रिजेस में फूक मार के मैजिक देना, स्टैंडिंग पेडल मोड में साइकिल को उड़ाना, एंड नोटिस किया आपने 90s का मैजिक किसी एक चीज में नहीं था, इट वॉज इन एवरी सिंगल डिटेल, राइट? छोटी छोटी हैबिट्स, छोटे छोटे साउंड्स, छोटे छोटे रूटीन्स, स्टील जग का पानी, कैसेट का क्लिक, टीवी का स्टैटिक, साइकिल की वो बेल, लैंडलाइन की वो घंटी, सब ऑर्डिनरी था, पर आज प्योर इमोशन लगते हैं क्योंकि उस वक्त हम चीज़ों को यूज कम, एक्सपीरियंस ज़्यादा करते थे। मूवी के सॉन्ग्स जो है सिर्फ सॉन्ग्स नहीं होते थे, समर वेकेशंस का साउंड ट्रैक बन जाया करते थे, एड्स सिर्फ मार्केटिंग नहीं करते थे, स्कूल कैच फ्रेजेस बना दिया करते थे, एंड बॉलीवुड उफ क्या ही बताओ। सिनेमा पॉलिश जरूर नहीं था 90s का, बट थोड़ा ड्रामेटिक था, काफ़ी सारा लाउड था, कभी कभी बहुत सारा अनरियलिस्टिक भी था, पर देखिए जो भी था दिल से था, एंड इसीलिए इतने सालों के बाद भी एक 90s वाला गाना, एक वो पुरानी सी स्मेल, या फिर वो एक पुराना सा टीवी का साउंड हमें इंस्टेंटली जो है वापस वहीं पर लेकर जाता है जहाँ पे लाइफ थोड़ी सी स्लो थी पर फीलिंग्स बहुत ज़्यादा रियल थी। वेल मैं अंतरा बिल्कुल आपको कहना चाहती हूँ थैंक यू सो मच वंस अगेन, मेरे साथ आप थे इस पूरी 90s वाली जर्नी में, ओपनिंग दैट डस्टी लिटिल मेमोरी बॉक्स विथ मी, इट्स अ प्लेजर ऑलवेज। वापस आऊंगी एक नए एपिसोड के साथ अगले हफ्ते, सेम टाइम सेम प्लेस, तब तक के लिए यू हैव अ ग्रेट ग्रेट डे अहेड, बाय बाय एंड टेक केयर।

0: पहुंचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे
2: नाचने का मन है
3: मेरा भी। आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 3 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
4: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore. Check it out.
5: Your passport to the world every Monday morning, from global headlines to a pinch of Bollywood spice.
3: The Morning Show with Renuka, 7 a.m. Mondays.
4: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore. Check it out.

0: आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: Your musty music cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
2: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है, टेंशन नहीं लेने का। टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त। बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्रा लाती है आरजे अंतरा, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
0: Not all music is loud. Some songs just sneak in. What makes you smile? Hum along and feel good. Welcome to Masti Unplugged, your indie acoustic playground on Radio Masti 24/7.
3: मेरे करण अर्जुन आएंगे?
0: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेस आएंगे। फिर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे।

0: नाचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: As the sun rises, so does hope. Begin your day with devotion, harmony and positivity with the Devotional Hour on Radio Masti 24/7. Masti Pe Bhakti, subah 6 baje se.
3: They are fresh. They are hot.

टू रूलिंग द काउंटडाउन. ये है मस्ती टॉप 20 पंपिंग अप फ्राइडे इवनिंग्स 5 PM ऑनवर्ड्स. द लेटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट द वीक्स टॉप चार्ट बस्टर्स. मस्ती टॉप 20 ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव. द ओनली लाइव बॉलीवुड रेडियो अक्रॉस साउथ ईस्ट एशिया सिंस 2009.

0: आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: Your Musty Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
2: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ। जोश में रहो।
3: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ, भक्ति प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
4: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।

0: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: योर मस्ती म्यूजिक कैफे इज ओपन, फ्रेशली ब्रूड बीट्स

0: नाचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए ड्यूटी पर।
0: Non-stop music, non-stop musty, only on Musty Music Cafe.
2: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore. Check it out.

0: This is Radio Masti 24/7 Live, the only local connect with global expat Indians. Anytime, anywhere.
1: Yo, yo, honey singer. चलती रहेगी आज सारी रात दारू, तुम बोतलें तैयार कर लो, पीने के लिए कोई वार नहीं होता, तुम मेरा या तबा

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे।
2: Every voice begins with a dream, a note that dares to fly. From Singapore to the world, Music Beyond Boundaries Season 4. Watch Music Beyond Boundaries only on Musti AVI, powered by Musti Media Network Singapore. For show timing and more, stay tuned to Radio Musti 24/7 Live. One world, one sound, one love. Music beyond boundaries, beyond borders, beyond time.
3: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स, सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
4: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: साहब, सत श्री अकाल, गेम जय सिंगापुर, सारू जय।
1: नो टॉकिंग अलाउड, सिर्फ म्यूजिक बोलेगा। बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।

0: Your musty music cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back. अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो एक केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: Are you even listening? या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, why to fear when जीजी मार्ट is there?
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट, your personal grocer. Just log on to ggmartonline.com. Grocery add to cart करो, check out करो और grocery at your doorstep.
0: वाजी, क्या बात जी?
1: Order today from GG Mart, your personal grocer.

0: की याद सताए जनाब, अकेलापन रात का तो हम है ना। रोज रात रेडियो मस्ती पर 11 बजे से।
1: करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे।

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंगआउट।

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: व्हाट्सअप व्हाट्सअप व्हाट्सअप पब्लिक, मैं हूँ मुग्धा और आप सुन रहे हैं MHO यानी कि मस्ती हैंग आउट, द एनर्जी हब, एक्चुअली द एनर्जी हब। मैं हूँ आपके साथ आपके आरजे मुग्धा और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो मस्ती 24/7 लाइव के शो में, जो कि बहुत सारी मस्ती और बहुत सारी एनर्जी से भरा हुआ है। और एक और बात, हम सिंगापुर के एकमात्र हिंदी रेडियो स्टेशन है, सो बी वेयर हमसे आगे तो ही नहीं बस। वैसे आज का दिन बड़ा एक्साइटिंग, आज है 14th of May और हवा में एक अलग ही सुकून है। पता है क्यों? क्योंकि थर्सडे आ गया है। मैं पता है थर्सडे को क्या कहती हूँ, छोटी फ्राइडे, मतलब वीकेंड की जो खुशबू है ना बहुत से आनी शुरू हो जाती है। आज एक और दिन है, आज है नेशनल डांस लाइक अ चिकन डे। नहीं ऐसे तो डक बोलते हैं, पर आप टेंशन मत लो, मैं आपको चिकन डांस करने को बिल्कुल भी नहीं कहने वाली हूँ। हम ढेर सारी बातें करेंगे, थोड़ा हंसेंगे, थोड़ा सा ब्रेन को रिफ्रेश करेंगे, अपने दिल की खिड़कियां खोलेंगे और थोड़ी ताजी हवा और वाइब को अंदर आने देंगे। टेंशन को कहो नॉट टुडे। अपनी फेवरेट सीट पकड़ो, क्योंकि आज मस्ती हैंगआउट की प्लेलिस्ट इज एब्सोल्युटली फ्रेश। स्टे कनेक्टेड।

0: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा।
1: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। रम्मा मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Friday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rock star Renuka with the week's top chart busters. Musty Top 20, only on Radio Musty 24/7, the only live Bollywood radio across Southeast Asia since 2009. Josh Mehra. Chhatpachi.

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर।
0: क्या
1: जी? जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी एड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: सीख ले।
1: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद RJ मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
2: ओहो, ब्रेक के बाद स्वागत है, दिस इज मी मुग्धा और आप मुझे सुन रहे हैं मस्ती हैंग आउट पर। एंड अब वक्त है हमारे सुपर स्पेशल सेगमेंट का, मेरा इंटेलिजेंस कैप्सूल, जहां मैं लेकर आती हूँ ऐसी खबरें जो आपका दिमाग हिला देती हैं, मतलब इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। बस दुनिया में ना वेल्लापंती की कोई हद नहीं है। एक खबर आई है, एक आदमी ने पुलिस को एक दो नहीं पूरे 20,000 साइलेंट कॉल्स कर दिए। व्हाट, मतलब हद है। फोन आप लगाते हैं, बस चुपचाप बैठ जाते हैं। पुलिस बेचारी हेलो हेलो हेलो करते करते थक गई। लोगों ने पूछा क्यों किया, तो पता क्या जवाब आया, बोर हो रहा था यार। एक तमाचा मारने, देखो भाई इतनी वेल्लापंती, अगर इतने फ्री हो तो हमें सुनो, मुझसे बात करो, प्लेलिस्ट पे नाच लो, पुलिस को साइलेंट ट्रीटमेंट मत दो। अगर उन्होंने अपना साइलेंट ट्रीटमेंट दिया तो बिना बात के वॉयलेंट हो जाएंगे, समझे।
3: आज दिन चढ़या तेरे रंग मरगा।
2: थोड़ा दिमाग लगाओ, अपनी अकल लगाओ, बकवास पे मत जाओ।
4: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085657।

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: वेल वेलकम बैक, आप है मुग्धा के साथ एंड दिस इज रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर एमएच शो। आपको पता है सिंगापुर की रोड्स अब और भी ज्यादा स्मार्ट होने वाली है। यस, LTA वाले जो है ना वो ERP 2.0 का फुल फीचर ट्रायल शुरू कर रहे हैं। मतलब ये कि अब आपकी कार में एक नया OBU यानी कि ऑन बोर्ड यूनिट जो है वो लगेगा, जो सीधा सैटेलाइट से कनेक्ट होगा। वुश ऐसे अब सड़कों पर ना नए मार्किंग्स दिखाई देंगे, ERP 2 लिखा होगा। नो मोर बिग गेट्स और गैंट्रीज, अब ऊपर वाला सब देख रहा है, लिटरली ऊपर वाला सब देख रहा है, सैटेलाइट सब देख रहा है। तो वो ऊपर ही तो है। yes. अब आप कब कहां क्या ड्राइव कर रहे हो, कैसे ड्राइव कर रहे हो, सब पता है। टेक्नोलॉजी ना कमाल है, लेकिन सैटेलाइट से बचना मुश्किल है।
2: तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त,
3: मैं चीज बड़ी हूँ मस्त।
1: रोड पे नजर, वॉलेट पे ध्यान, ये दोनों बहुत जरूरी है, समझे।

0: सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जी जी, जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकाज्म मिलेगा, ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
3: हाय, मैं हूँ मुग्धा और आप मुझे सुन रहे हैं मस्ती हैंग आउट पर। वेलकम बैक। मेरी इंटेलिजेंस कैप्सूल आपके दिमाग को और तेज दौड़ाने वाली है और साथ में ठंडा भी रखने वाली है। पूछो कैसे, क्योंकि मेरे पास आम है। आम, आम बोले तो मैंगो। जीजी बात जो है ना, वो लेकर के आए हैं फ्रेश फार्म पिक्ड मैंगोज। आप जा करके उनकी वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं, वहां पे आपको पता लग जाएगा। देवगढ़ के अल्फांसोज हैं, रत्नागिरी हैं, सब कुछ उधर मिलेगा आपको। एंड एक कोड भी है जिसका शॉपिंग करते वक्त आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मत भूलना, new10 कोड, NEW10। ggmartonline.com पे जाइए और जब भी खरीदारी आप करेंगे और इस कोड का इस्तेमाल करेंगे, आपको फ्लैट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। वैसे एक और चीज है, अगर आप इस वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करते हैं और उस रजिस्ट्रेशन का स्क्रीनशॉट हमें भेज देते हैं, तो उसके बाद भी आपको एक स्पेशल कूपन गिफ्ट वाउचर मिलेगा। समझे? मतलब आम के आम और गुठलियों के भी दाम। देखा, लोग कहते थे अरे आम गिनो, आम खाओ, गुठलियों का क्या करोगे। मैं तो कहती आम के आम, गुठलियों के दाम।

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर, गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंगआउट।

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकैज़म मिलेगा, ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: हे शो के दूसरे आर में आपका बहुत बहुत स्वागत है, ये है द बॉलीवुड आर, जी हाँ, द ग्लैमर एंड ऑल दैट ओम वाइब। चलिए मैं आपको सीधा यहाँ से लेकर के चलती हूँ, कांस फिल्म फेस्टिवल शुरू हो चुका है और मैं बात करने वाली हूँ कांस 2026 की, जो कि अब थोड़ा ज्यादा क्लासी है, थोड़ा ज्यादा सासी है। फ्रेंच रिवियरा पे हमारी देसी गर्ल्स जो हैं वो फिलहाल आग लगा रही हैं। डीओजी क्वीन ऐश्वर्या राय वहां पर से जो है वो अपना डंका बजा रही हैं और इनके साथ हमारी आलिया जो है शी इज ऑल्सो मेकिंग सम न्यूज हियर एंड देयर, दिख रही हैं वो। आपको पता है 1946 से कांस का सिलसिला चला आ रहा है, पर आज जो इंडियन पावर है ना वो दिखाई दे रही है ऑन द रेड कार्पेट। इट्स लाइक नेक्स्ट लेवल है, स्टाइल, द स्वैग एंड द सारी। कांस हो या सिंगापुर, हमारे इंडियंस की जो है ना वो ये एक खूबी है, वो छा जाते हैं जहां भी जाते हैं। आपको रेड कार्पेट पे सबसे कमाल का लुक किसका लगा मुझे बताइएगा। बाकी एक ब्रेक, गाने के बाद मिलते हैं।
2: Oh yeah.

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा, ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: उफ, अब लगने वाला है थोड़ा तड़का मिर्ची का। Hi, this is me, मुग्धा आपके साथ और आप मुझे सुन रहे हैं मस्ती हैंग आउट पर। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, लोगों को सेलेब्स की लाइफ में इतना इंटरेस्ट क्यों होता है। अभी फिलहाल जो सारा इंटरेस्ट है दैट्स डाइवर्टेड मोनी रॉय एंड उनके हस्बैंड सूरज नामबियार को लेकर। उनके सेपरेशन के बातें बहुत उड़ रही हैं, हर कोई एक्सपर्ट बन के बैठ गया है और अपने अपनी बातें कर रहा है, कंटेंट क्रिएट कर रहा है, पर मोनी ने फिलहाल एक साइलेंस ब्रेक किया है। उन्होंने सीधा बोला है कि मुझे स्पेस और प्राइवेसी दोनों चाहिए। मतलब सच में यार, आखिर चाहते क्या हो भाई है? दो लोग साथ दिखें तो प्रॉब्लम, ना दिखें तो प्रॉब्लम। मोनी ने ना ठप्पा लगा दिया कि उनकी पर्सनल लाइफ उनकी अपनी है, गॉसिप नहीं है, ठीक है, उस पर ज्यादा आप अपना खर्चा पानी मत चलाओ। पर एक बात बताऊं, जब आप अपनी पर्सनल लाइफ को पब्लिक कर देते हो तो पब्लिक लाइफ प्राइवेट लाइफ में वापस जाने में बहुत वक्त लगता है। पब्लिक जानती है कि क्या चल रहा है तो पब्लिक पूछेगी, अब आप इसको कैसे हैंडल करोगे तो पब्लिक के बीच में आने से पहले सोचना चाहिए था। बट स्टिल, कुछ चीजें पब्लिक करने के बाद भी पब्लिक को ये हक नहीं कि वो आगे होके कोई भी बात उस बारे में पूछे। That's very confusing. I think social media life is very confusing. बहुत ज्यादा

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: नॉट ऑल म्यूजिक इज लाउड, सम सॉन्ग्स जस्ट स्नीक इन, मेक्स यू स्माइल, हम अलोंग एंड फील गुड। वेलकम टू मस्ती अनप्लग्ड, योर इंडी अकूस्टिक प्लेग्राउंड ऑन रेडियो मस्ती 24/7।

की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti 24/7 live.

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: हाय, मैं हूँ मुग्धा और आप मुझे सुन रहे हैं मस्ती हैंग आउट पर। अब हम जाते हैं हॉलीवुड। हॉलीवुड से कैसी खबर आ रही है जिसके लिए हालेलुया बोलने का मन हो रहा है। जी तैयार हो जाइए, 2025 के ऑस्कर्स को होस्ट करने वाले जो है वो कॉमेडी के लेजेंड हमारे जी ब्रायन, जी द ब्रायन इज बैक। कौन गाना मतलब ऑस्कर्स के स्टेज पे थोड़ा लाफ्टर, थोड़ा सार्केज्म एंड बहुत सारा प्योर एंड पूरा पूरा एंटरटेनमेंट। पिछले कुछ सालों से ना लोग कह रहे थे कि ऑस्कर थोड़ा बोरिंग हो रहा है, पर कुनान के आने से अब जिंजर हेड एनर्जी जो है हॉलीवुड में हंगामा मचाने वापस आ गई है। मुझे लगता है इस बार रेड कार्पेट से ज्यादा ना फनी जो होगा वो होगा उनका ओपनिंग मोनोलॉग। ऑस्कर्स के मोनोलॉग हैव ऑलवेज बीन इन न्यूज, आपको पता है ना। इसे आपको क्या लगता है, कौन इन ऑस्कर्स के स्टेज पे बैंग ऑन करेंगे या इस बार भी बोर है यार ऐसा कुछ होगा? देख के पता लग जाएगा।
2: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way. Oh,

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085657।

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकाज्म मिलेगा ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: बॉलीवुड आर यानी R2 के आखिरी पड़ाव पर हम हैं। मैं हूँ मुग्धा आपके साथ और मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे कलाकार की जो कि खिलाड़ी है और कॉमेडी भी कर लेते हैं, एक्शन भी कर लेते हैं, इमोशन भी कर लेते हैं और खिलाड़ी है, सब समझ के मैं बात कर रही हूँ अक्षय कुमार के। अक्षय कुमार फैंस कुर्सी की पेड़ी बांध लीजिए, तैयार हो जाइए, वेलकम टू द जंगल जहाँ पे आप कभी भी कर सकते हैं। इसका फर्स्ट पोस्टर जो है रिलीज हो गया है, एंड बॉस, ये कोई ऐसी वैसी मूवी बिल्कुल नहीं है। 30 से ज्यादा तो स्टार्स हैं एक साथ, भाई साहब शूटिंग कैसे करी इन्होंने, अक्षय, सुनील शेट्टी, परेश रावल, रवीना टंडन, 30 बोल रही हूँ तो समझ जाओ 30 लोग हैं, नाम लेने बैठूंगी तो शो में आएगी, बहुत ज्यादा कम मेरे पास वक्त बचेगा। पोस्टर देख के ना ऐसा लग रहा है कि कॉमेडी का धमाका होने वाला है। एंड सबसे बड़ी खबर, ये मूवी जून में रिलीज हो रही है, मतलब गर्मियों में थोड़ा जंगल वाला एडवेंचर हो जाएगा, ये तो बनता है बॉस। वेलकम सीरीज की ना मुझे ऐसा पोस्टर देख के लग रहा है कि दिस इज द मोस्ट आइकॉनिक, पर मुझे अभी भी लगता है जो बात वेलकम पहली वाली में थी ना वो मिसिंग होगी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है। और मुझे तो लग रहा है इतने सारे स्टार्स हैं, कुछ बने तो अच्छा बने, कहीं बीरबल की खिचड़ी ना बन जाए, है ना।

0: की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti, 24/7 live fan.
1: Hey, I know you all are enjoying Masti Hangout, लेकिन आपको पता है 7 बजने वाले हैं and क्या होता है 7 बजे? We have a brand new segment जिसका नाम है The Cricket Corner. कोने में कोई लेके नहीं जाएगा, जितेश आएंगे इधर कोने में, yes, और वो देंगे IPL का एक क्विक हाईलाइट एंड देन आपकी आरजे मुग्धा विल बी बैक, आई एम बैक वाले स्टाइल में।

0: It's time for the Cricket Corner on Radio Musti 24/7 Live.
1: Namaste, Adab, and Sat Sri Akal, and a very warm welcome to the Cricket Corner on Radio Musti 24/7 Live. मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त जितेश, जो लेके आता है डेली आईपीएल अपडेट्स मंडे टू फ्राइडे शाम 7 बजे. सो बात करते हैं कल खेले गए मैच के बारे में. कोहली. कल पूरे स्टेडियम में मैच के बाद यही आवाज गूंज रही थी, द चेज मास्टर, द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ इंडियन क्रिकेट, विराट कोहली शो. तो कल था विकेट वेंसडे और मैच था केकेआर वर्सेस आरसीबी एट रायपुर स्टेडियम, और ये मैच सिर्फ विराट कोहली के लिए याद किया जाएगा. क्या जबरदस्त सेंचुरी मारी है, अनबीटन ऑन 105 ऑफ जस्ट 60 बॉल्स. और सिर्फ मैच ही नहीं जीता, आरसीबी को टॉप ऑफ द टेबल भी बना दिया. नाउ आरसीबी विल मोस्ट लाइकली फिनिश इन टॉप टू. अगर मैच की बात करें तो आरसीबी वन द टॉस एंड पुट केकेआर टू बैट, एंड केकेआर स्कोर्ड 192 फॉर 4 इन 20 ओवर्स. रघुवंशी ने 71 ऑफ 46, ग्रीन ने 32 ऑफ 24 और रिंकू सिंह ने 49 ऑफ 29 बॉल्स बनाए. बट आरसीबी ने ये चेस सिर्फ 19.1 ओवर में पूरा कर दिया, विद ओनली पार्टिकल मेकिंग सम इम्पैक्ट विद द बैट टू सपोर्ट कोहली, एल्स इट वॉज जस्ट अ वन मैन शो. For full breakdown of these matches, watch me, Santosh and Neil on Musti AVI every Monday and Friday at 8:30 PM. If you miss it, you can go to the Musti AVI tab on our app and watch all episodes anytime, anywhere. Main hoon Jitesh. Hum kal fir milenge with more masala, more cricket and more IPL action only on Radio Musti 24/7 Live.
0: The Cricket Corner on Radio Musti 24/7 Live.

0: बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद RJ मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: हेलो, वेलकम बैक। शो का थर्ड आर, एंड थर्ड आर इज लाइक वेट व्हाट। हाँ, अजीबो गरीब खबरें आती हैं यहाँ पे, गरीब भी होती हैं और अजीब भी होती हैं। अजीबो गरीब, किसने याद किया ये वर्ड। खैर, चाइना से खबर आई है जहाँ पे एक स्कूल ने रिबेलियस टीन्स को न सुधारने का एक अनोखा तरीका ढूंढ के रखा है। उन्होंने बच्चों को पता है क्या थमाया है? बेबी डॉल्स। पर बॉस, ये कोई ऐसी वैसी डॉल्स नहीं है। नहीं, एनिमल नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक बेबीज हैं जो सोती नहीं है, बस रोती रहती है। जी, टीन्स को डॉल्स 24 घंटे अपने साथ रखनी थी, चाहे वो क्लास में हो या नींद में। अब क्यों? ताकि उन्हें समझ में आए कि पेरेंटिंग कितनी मुश्किल है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या चीज होती है। बच्चों को लगा बड़ा मजा आएगा, पर दो दिन में सब ने सरेंडर कर दिया। अगर हमारे माँ बाप ने हम पे सरेंडर कर दिया होता ऐसे दो ही दिन में, तो पता नहीं क्या ही होता। सबके चेहरे उतरे हुए थे, सारा एनर्जी, सारा रिबेलियस पना जो था गायब हो गया, और सब कह रहे हैं अब हम कभी रिबेलियस नहीं बनेंगे। बस हो गया दो दिन में है? नहीं, ओ स्कूल ने ना सीधा आपको ड्यूड से डैडी डैडा बना दिया। सच में आपको क्या लगता है, हर जगह पे ऐसे एक्सपेरिमेंट होने चाहिए? For all those rebellious kids, आप समझ रहे हैं ना, इस बात में rebellious ones।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकैज़म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजी मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: हाय, वेलकम बैक। याद है गेम ऑफ थ्रोन्स की वो एंडिंग सीजन 8, जिसके बाद हम सबका दिल टूट गया था। फैंस इतने नाराज थे कि मतलब क्या ही बताऊं। पर आपको पता है, एक फैन ने AI का सहारा लिया एंड सीजन 8 को फिक्स कर दिया। इस फैन ने AI टूल्स का इस्तेमाल करके पूरे फिनाले को रीराइट किया, रीविजुअलाइज किया, और लोग इसे हीलिंग बोल रहे हैं। मतलब जो काम बड़े बड़े राइटर्स नहीं कर पाए वो AI ने कर दिखाया। अब डेनेरिस टारगेरियन और जॉन स्नो की स्टोरी वैसी लग रही है जैसे एक्चुअली फैंस को चाहिए थी। वाह, AI अगर ऐसी पुरानी यादें और टूटे हुए दिल जो है उसको ठीक करने की कोशिश करने लग जाए ना, तो क्या ही बात है। बट कुछ चीजें ना हील करने के लिए नहीं बनी होती है। हर लव स्टोरी का एंडिंग हैप्पी नहीं होता है। क्यों AI को लगता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा? क्यों करना है ठीक? हर चीज को हील करना इम्पोर्टेंट नहीं है। कुछ जख्म खुले छोड़ देने चाहिए, तभी ठीक होते हैं। और कभी कभी जैसे को तैसा मिलता है। हाँ ठीक है, आपका दिल टूटा, बट दैट हैपेंड एक्चुअली बिकॉज़ इट वाज अबाउट टू हैपन। उसको ऐसा होना था इसलिए वो है। खैर, रंजना की भी एंडिंग चेंज हुई थी और उसको वापस री रिलीज किया गया था। फैंस बहुत नाराज थे, डायरेक्टर बहुत नाराज थे। वाई? उसी इमोशन से तो कनेक्ट हुए थे लोग। हैप्पी एंडिंग तो सब सोचते हैं, पर जब अनएक्सपेक्टेड होती है एंडिंग, तभी तो आप हिले रह जाते हैं। आपको क्या लगता है बताना मुझे।
2: Hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like.

0: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ।

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकैज़म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: हाय एवरीबॉडी, मैं हूँ मुग्धा आपके साथ और आप मुझे सुन रहे हैं मस्ती हैंग आउट पर। मैं बोल रही थी कुछ अचानक से हो जाए तो आपको जो अनएक्सपेक्टेड हो तो लगता है ओ माय गॉड कुछ ऐसा ही हुआ। कभी आपने कोई ऐसी चीज हिडन मैजिक ट्रेजर देखा है जो बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था और अचानक से आपको दिखा हो? नहीं, कोई बात नहीं। मैं बात कर रही हूँ डिज्नी के एनिमल किंगडम के एक बहुत ही वायरल मोमेंट की, जो वायरल इसलिए है क्योंकि वो है भी एकदम हिडन ट्रेजर मैजिक की तरह। लोग इम्प्रेस भी हो रहे हैं और थोड़ा डरे भी अचानक से, पर ये डराने वाली चीज नहीं, ये तो डिवाइन है। डिवाइन, इनका नाम ही डिवाइन है। ये कोई ऐसी वैसी कैरेक्टर नहीं है, बेसिकली ये कैमोफ्लॉज है और ये क्वीन है कैमोफ्लॉज की। ये पेड़ों और बेलों के बीच में ऐसे खड़ी हो जाती है कि कोई नहीं पहचान सकता कि वहां कुछ अलग से रखा गया है। सबको लगता है ये तो नेचुरल है, ये स्ट्रक्चर है, ये और कहीं नहीं जा सकता, ये नेचुरल है, ये पेड़ है। पर नहीं, एक्चुअली वो पेड़ नहीं होता, शी इज डिवाइन, कोई नहीं पहचान पाता। फिर जब ये हल्की से हिलती हैं तब लोगों को पता लगता, अक्सर तो पता ही नहीं लगता, वो तो किसी ने कैमरा लगा के कैप्चर कर लिया तब मालूम पड़ा डिवाइन हिली तब मालूम पड़ा, बिकॉज इट वॉज कैप्चर्ड, तब मालूम पड़ा यहाँ तो इंसान भी खड़े होते हैं। पता है इससे क्या सीखने को मिला? लाइफ में ना हम इतना फास्ट भागते हैं कि कई बार हिडन मैजिक जो होता है ना, छोटे ट्रेजर्स हमारे आसपास, वो हम देख ही नहीं पाते, उनको मिस कर देते हैं। थोड़ा स्लो हो जाते हैं, थोड़ी आंखें खोल के रखते हैं, मैजिक आपके सामने है, देख

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085657।

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: हाय एवरीबॉडी, दिस इज मी मुग्धा। व्हेन द एनर्जी इज हाई देन ओनली टाइम फ्लाइज। लगता है और बात करें तो पता चले उप्स वक्त हो चुका है जाने का। जी वक्त हो चुका है आपको बाय बाय बोलने का। हमने आज बहुत सी बातें करी, साइलेंट कॉलर्स जो कि बोर हो रहे थे तो पुलिस से पंगा ले लिया, ऑस्कर के जिंजर हेड हमारे होस्ट जिसने की हिडन मैजिक, काफी कुछ एक्सप्लोर किया, बॉलीवुड की बातें है ना। अब मैं आपसे की बात करूंगी, मैं जा रही हूँ लेकिन थोड़ा चिकन डांस कर ही लेना आप अकेले, इधर ही गाने तो बज ही रहे। हाँ हाँ कमरा बंद करके करना, वैसे भी कहते हैं डांस लाइक नो बडी इज वॉचिंग यू की फर्क पहनता है। कभी चिकन को देखा है घबराते हुए डांस करते वक्त? मैं तो चिकन को डांस करते नहीं देखा, उसके जैसे कैसे नाचेंगे। खैर जैसे आपका मन करे वैसे नाच लेना, बस खुश रहना, स्टे एनर्जेटिक, स्टे क्यूरियस एंड कीप वाइबिंग। अगली बार फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम एनर्जी के साथ। दिस इज मुग्धा साइनिंग ऑफ, लव यू ऑल।

0: स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते, और एक ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ स्वागत है आप सभी का डियर मस्ती दिल से में, जहां पे आपके दिल की बातें होती हैं थ्रू योर लेटर्स। मैं हूं आपकी अंतरा, यहां पर जुड़ चुकी हूं आपके साथ, एंड ये जो लेटर्स हैं वो हम तक पहुंचते हैं और फिर हम उन बातों पर साथ में ही बात करते हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, द स्पेस इज कम्प्लीटली सेफ। कैसे? अगर आपको नहीं पता तो लेट मी टेल यू, हम आपके लेटर्स, मेल्स, मैसेजेस जरूर पढ़ते हैं, बट वी नेवर टेक योर नेम। आप हमारे लिए हमेशा ही डियर लिसनर होते हो, क्वाइट लिटरली एक्चुअली, और आपके लिए हम हैं डियर मस्ती फॉर दिस शो। तो यस, हम जॉक्स जो है वो फिर से वापस आ गए हैं कुछ सिचुएशंस, कुछ इमोशंस, और उन पे हम क्या सोचते हैं वो लेकर। हाल ही में मैंने एक बहुत ही प्यारा सा वीडियो देखा, और जो उसमें बोला गया वो बहुत ही सिंपल था, बट समहाउ इट काइंड ऑफ स्टेड विद मी। सो वीडियो में दो बच्चे खड़े होते हैं एक दूसरे के कंधे पे हाथ रखे हुए। आसमान की तरफ देखते हुए एक बच्चा दूसरे से पूछता है, तुझे जिंदगी से क्या चाहिए? दूसरा जवाब देता है, सुकून। फिर वो पूछता है कि कितना सुकून, और जवाब आता है, बस इतना कि संडे की शाम को मंडे आने का डर ना लगे। सो सिंपल ना, पर कितना कुछ कह जाता है। हम सोचते इतना है कि फील करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता। लाइफ ने सबको इतना बिजी कर दिया है अपने कैओस में कि उसके बीच में काम ढूंढना भी अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है, और अगर हम खुद अपने लिए वो काम नहीं ढूंढेंगे तो कौन ढूंढेगा, है ना। मंडे से ट्यूसडे भी हो चुका है और हम सब ऑलरेडी वीक में सेल थ्रू कर रहे हैं, और इस बार भी डियर मस्ती दिल से की कोशिश बस इतनी सी है कि ये बन जाए आपका सेफ, काम, लिटिल दैट कंफर्ट जोन, जहां आप फील करो, कनेक्ट करो। और हाँ, अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं, रिप्लाई करना चाहते हैं, देन फील फ्री टू डू सो। तो बस हैंग ऑन टाइट, शुरू करते हैं डियर मस्ती दिल से, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
2: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवघर, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085-6577।
2: ये रात तो अपनी है, पर एक ख्याल किसका है?
3: तुमको लेकर
2: ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है?
4: मुझे चांद पे ले चलो।
2: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बनके रात के हम सफर हर रोज 11 बजे। ट्यून इन टू

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: वेलकम बैक टू डियर मस्ती दिल से, मैं हूँ आपके साथ आपकी अंतरा। और चलिए सीधा चलते हैं आज के फर्स्ट लेटर की ओर। सच कहूँ जब मैं एक्चुअली मैं ना ये लेटर कुछ देर पहले उसको पढ़ रही थी तो मैं थोड़ी देर के लिए रुक गई। मेरा दिमाग ना ऑलरेडी सोचने लगा कि इसका जवाब कैसे दूं, बिकॉज यू नो सम लेटर्स दे डोंट जस्ट आस्क क्वेश्चंस, दे कैरी इमोशंस क्वाइटली इनसाइड देम एंड वी ऑल फील दैट दीज इमोशंस हैव टू बी एक्नॉलेज्ड एंड एक्सेप्टेड सिंसियरिटी के साथ। सो लेटर पढ़ने से पहले मैं बस एक स्पेशल थैंक यू और एक प्यारा सा हक भी भेजना चाहती हूँ जिन्होंने भी हमको लिखकर भेजा है ये, फॉर शेयरिंग ये सच डीप इमोशन विथ अस। I know it takes a lot. So here we go. Dear Masti, being in my poly years, I find myself asking this question again and again. Why do my parents fight so much? Why do they never have time for me? My friends say, go and talk to them, but I don't know how. Am I to blame in this situation? Is it because of me? You see how scattered my thoughts are and how badly I don't want them to be like this. What do you think? Okay, the first thought that comes to my mind is this. Not talking about something usually makes it worse. That is for sure. But phir bhi, I think let's take a small pause here. Let me organize my thoughts a little bit. Aur phir main aapko ek sincere perspective dena chahti hoon. And I hope that's okay.

जी हाँ, जिंदगी के जद्दोजहद में जो है हैरान हम हो ही जाते हैं, और ये इसलिए पॉज लिया जा रहा है क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई लेटर हम कम या ज्यादा उसको फील करते हैं। इट्स जस्ट दैट कभी कभी कुछ बातें हमें प्रॉपरली सोचकर बोलनी चाहिए, और जब हमें लगता है कि हमें थोड़ा और ऑनेस्टली थिंक करना चाहिए तो हम इसीलिए पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ ये बोल देते हैं दैट जस्ट गिव अस अ मोमेंट, वी विल कम बैक। बट ऑनेस्टली बीइंग ट्रांसपेरेंट इज व्हाट कीप थिंग्स clear. So stay tuned and I will be right back with the answer on Radio Masti 24/7 Live.

0: Radio Musty 24/7. Download Radio Musty 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
1: नाचने का मन है मेरा भी आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी. व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 3 पर. मस्ती वॉइस आपकी चॉइस.
0: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर. चेक इट आउट.
2: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा.
3: हाँ जी जी.
2: आधा kg मसूर दाल.
3: जी जी.
2: काजू किशमिश. ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं.
3: जी जी.
2: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी.

अनरिजॉल्व्ड रिजेंटमेंट बिकम्स अ लाइफ पैटर्न, और ये पैटर्न्स किसी भी तरीके से हेल्दी नहीं होते। वेलकम बैक टू रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है डियर मस्ती दिल से, एंड फिलहाल इस वक्त आपकी अंतरा है यहाँ पर आपके साथ। कुछ देर पहले हमने एक लेटर पढ़ा जहाँ एक लिसनर ने हमारे साथ शेयर किया कि पेरेंट्स के कॉन्स्टेंट फाइट्स, लैक ऑफ टाइम, और उन सब के बीच में वो खुद को ही ब्लेम करने लगे हैं कि क्या ये सब मेरी वजह से हो रहा है। सो डियर लिसनर, लेट मी स्टार्ट विद अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल। प्रेशर कुकर में जब प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्ड हो जाता है ना, तो उसकी सीटी बजने लगती है, और अगर वो प्रेशर टाइम पर बाहर ना निकले तो कुकर फट भी सकता है। हम सभी का गुस्सा जो है ना, हमारी फीलिंग्स भी कुछ ऐसी ही होती हैं। जब छोटी छोटी बातें ना जमा होती रहती है और हम चुप रहकर सब अंदर भरते रहते हैं, यस, उस वक्त चुप रहना ईजियर लगता ज़रूर है, but only at that moment, क्योंकि अंदर ही अंदर everything keeps on getting accumulated, और फिर एक दिन एक छोटी सी बात पर we explode, that's how it works। इसीलिए बात करना जो है ना difficult जरूर होता है, but जरूरी भी होता है। Simple language में just get it out of your system। अगर आपके दिल में इतनी सारी बातें हैं जो आपने अपने parents को नहीं कहा है और कहना चाहते हैं, तो एक दिन वक्त निकालिए, शायद जब सब घर पे हो या यू नो डिनर के लिए या खाने के लिए बाहर निकले हो, टॉक इट आउट, टेल देम ऑनेस्टली दिस इज हाउ आई फील। और अगर बात करते करते आपको गुस्सा आए, रोना आए, लेट दोज टीयर्स कम आउट। याद रखिए, वो आंसू वीकनेस नहीं है, दे शो यू स्ट्रेंथ, क्योंकि अपनी फीलिंग्स को वर्ड्स देना बहुत हिम्मत का काम होता है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, यू आर इनफ। कभी भी किसी और के बिहेवियर या सिचुएशन के लिए खुद को ब्लेम कभी नहीं करना चाहिए। और हाँ, कभी कभी पेरेंट्स को भी एक लिटिल पुश चाहिए होता है यार, बिकॉज दे आर ह्यूमंस टू, नो वन इज परफेक्ट। हो सकता है जब आप उनसे बात करें तो आपको ये रियलाइज हो, बस यही करने की जरूरत थी। आई नो इट इज ईजियर सेड देन डन, बट जस्ट ट्राई इट वंस। और अगर आप दो कदम आगे बढ़कर कॉन्वर्सेशन को शुरू करते हो तो उससे आप कहीं छोटे नहीं हो जाते। और अगर फिर भी चीज़ें बेटर ना हो, देन आई वुड सजेस्ट प्रोफेशनल हेल्प लेने से भी कभी भी मत हेजिटेट करना। प्लीज रिमेंबर, योर मेंटल हेल्थ मैटर्स, डोंट स्ट्रेच द पेन फॉर टू लॉन्ग, ऑलवेज टॉक इट आउट।

0: बिल्कुल, वी वुड विश कि गाना आप यही गाएं दैट एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, क्योंकि जहां पे प्यार है वहां पर जस्ट टॉक इट आउट, यू आर इनफ, सो नेवर एवर ब्लेम योरसेल्फ अगेन फॉर समवन एल्स, हमेशा ये बात रखिएगा और बिल्कुल सुनते रहिए रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: बम चिक चिक बम चिक बम बम बम चिक चिक

0: We are Radio Masti 24/7 live, keeping you connected Bollywood style anywhere, anytime.
1: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
2: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ। जोश में
3: रहो। आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
4: जब घर की याद आए GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवघर, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085 6577।

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: जिस दिन आपने इस बात को एनालाइज कर लिया कि आप खुशियां सेलिब्रेट करने के लिए या तो लेटेस्ट सेलफोन खरीद लेते हैं या लेटेस्ट लैपटॉप ले लेते हैं, बहुत सारी शॉपिंग कर लेते हैं, तो आप अपनी जो खुशियां है ना वो सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, बस आप उन्हें काट रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई है नहीं, कुछ खर्चा कर ले, डोपामीन रिलीज हो जाएगा, माइंड को शांति मिलेगी और बस यही लाइफ है। ना ना ना ना, गलती कर रहे हैं आप। सो हेलो, हाय, मैं आरती नुपुर, डियर मस्ती दिल से शो पर आपके साथ है। एंड आज इन्हीं बातों से जुड़ा हुआ एक लेटर भी मेरी आंखों के सामने आ चुका है, जिसमें लिखा है कि हाय नुपुर, मैं ना शॉपिंग के एडिक्शन में आ चुकी हूँ और मुझे शॉपिंग करके बहुत अच्छा लगता है। आज से नहीं, काफी साल हो गए हैं। मुझे जो चीजें नहीं भी चाहिए होती है मैं वो भी खरीद लेती हूँ, और जो चाहिए होती है वक्त पर मिलती नहीं है तो मैं दोबारा शॉपिंग कर लेती हूँ। ऐसा करते करते मुझे तो बहुत खुशियाँ मिल रही है, लेकिन मेरे आसपास वाले मुझे बड़ी टांग खींच लेते हैं। मेरे घर वालों को मेरी आदत पसंद नहीं है, मेरे लाइफ पार्टनर की भी मुझसे इसी मैटर पे लड़ाई होती है। आपके अकॉर्डिंग मुझे क्या करना चाहिए? जिन्होंने मुझे ये लेटर भेजा है, सबसे पहले मैं बता दूं, मैं आपको पर्सनली नहीं जानती हूँ, लेकिन आपके एक बिहेवियर को डिकोड ज़रूर कर सकती हूँ। और वो ये है कि आप जो अपनी खुशियाँ हैं ना वो मटेरियलिस्टिक स्टफ में ढूंढने लगी हैं, और आज से नहीं पिछले काफ़ी वक्त से। आपको ऐसा लगता है कि लाइफ में बहुत सारे दुख चल रहे हैं, सो वाई नॉट एक एस्केप ढूंढें, एंड दैट इज़ योर शॉपिंग एडिक्शन, है ना। आप बहुत कुछ खरीद लेती हैं, आपके माइंड में एक डोपामिन हार्मोन रिलीज हो जाता है, फिर आप रिलैक्स फील करते हैं, और कुछ ही वक्त के बाद आप दोबारा उन चीज़ों को याद करती हैं या फिर दोबारा कोई प्रॉब्लम आती है तो आप दोबारा से इसी एडिक्शन की तरफ चली जाती है। थोड़ी सी गलत है, आपके आसपास वाले बिल्कुल सही हैं। आपको खुशियाँ इंसानों में ढूंढनी है, उन्हीं के साथ सुख और दुख शेयर करके अपने कम और ज़्यादा करने हैं, ना कि एक एस्केप शॉपिंग का ढूंढ के आपको अपनी लाइफ में खुद को डाइवर्ट करना है, राइट? एनीवेज, बिना डाइवर्जन के अगला वाला गाना। बिल्कुल, मैं आरजे नुपुर ऐसे ही खूबसूरत गानों के साथ आपके साथ बनी हुई है।

मुझे ऐसा लगता है कि एक हस्बैंड वाइफ, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के ही रिश्ते ऊपर से बन के नहीं आते, बल्कि जितनी भी तरह के रिश्ते पॉसिबली हैं, वो चाहे हमारे सिबलिंग्स के साथ हो, वो चाहे हमारे पड़ोसी के साथ हो, या दोस्ती यारी में हो, या दुश्मनों के भी रिश्ते हो, वो सारे रिश्ते कहीं ना कहीं ऊपर से बनकर आते हैं, एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दैट। हेलो हाय, मैं आज ऊपर डियर मस्ती दिल से शो पर आपके साथ है कि कभी भी किसी भी रिश्ते को ना च्युइंगम समझ कर चबाना नहीं चाहिए, है ना। अपने तो सिंगापुर में वैसे भी अलाउ नहीं है आपको बल्कि रिश्तों की तरह बहुत ही इजी पीजी तरह से जाना चाहिए, धागों की तरह रखना चाहिए। अगर टूट गए तो हमारे थे ही नहीं, अगर साथ रह गए तो हमारे थे। एनीवेज, अभी मेरे हाथों में जो लेटर है उसमें लिखा हुआ है कि मैं मेरी 6 साल पुरानी बेस्ट फ्रेंड से लड़ाई कर चुकी हूँ और इस बात को 4 महीने गुजर गए हैं। 4 महीने से ना उसने मुझे कॉल किया है, ना मैंने उसे कॉल किया है। मेरा मन तो रोज करता है, मैं उसकी इंस्टाग्राम स्टोरीज रोज देखती हूँ, उसके दिए हुए गिफ्ट्स भी मैं कहीं ना कहीं रोज देख ही लेती हूँ। मेरे मन में आता है कि क्यों ना मैं उसे कॉल करूँ, उसको 2 फटकार लगाऊँ और फिर से बातें करने लगूँ। लेकिन जो झगड़ा है वो उसकी तरफ से शुरू हुआ था, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसे कॉल मुझे करना चाहिए। सो व्हाट डू यू थिंक, कि मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं, मैं कॉल करूँ या नहीं। एनीवेज, जिन्होंने मुझे ये लेटर भेजा है, आपका लेटर पढ़ के मुझे लग रहा है कि आज ना फ्रेंडशिप डे है, सो व्हाई नॉट फ्रेंडशिप डे पे मैं आपको सजेशन दूँ। जस्ट जोकिंग। एनीवेज, चलिए ठीक है कि झगड़ा अगर सच में उनकी तरफ से शुरू हुआ था तो देखो कहीं ना कहीं उनको पहले 2 कदम आगे बढ़ाना चाहिए, 1 कदम अगर वो आगे आ जाए तो आप 4 कदम आगे चली जाए। और उसने बिल्कुल कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करी है तो आपको थोड़ा सा पीछे ही रहना चाहिए, है ना। कई बार ऐसा होता है कि दोस्ती यारी वाले रिश्ते ना कुछ अच्छाई के लिए टूटते हैं और हमें वक्त रहते समझ में आ जाता है कि यार हम क्या कर रहे थे, उससे बेहतर दोस्त भी हमें मिल सकते थे, है ना। तो एक बार के लिए आप चांस मत लीजिए, जिसकी गलती है उसको थोड़ा सा फील होने दीजिए। अगर वो 1 कदम यानी 1 मैसेज भी आपको करे ना तो आप पलट के कॉल कर देना, यानी 4 कदम आगे बढ़ जाना। लेकिन तब तक के लिए आप थोड़े से फ्रीज रहो यार, लेट्स वेट क्या होता है क्या नहीं।

सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वी आर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से। और फाइनली मेरी बारी आ ही गई। गुड इवनिंग एंड वेलकम। जी हाँ, आप सुन रहे हैं हमारा एक खास शो जिसका नाम है डियर मस्ती दिल से। और अब रेणुका को किसने क्या लिखा है उसको साथ साथ सुने क्या? डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ। तो इस अनजाने इंसान की बारी आ चुकी है और मेरी चिट्ठी कुछ इस तरह से है। हाय रेणुका, लेटली आई हैवंट बीन फीलिंग ओके मेंटली, बट आई हाइड इट फ्रॉम माय फैमिली। आई फील रेस्टलेस ऑल द टाइम, माई हैंड समटाइम्स शिवर, एंड एट नाइट आई जस्ट कांट स्लीप प्रॉपरली। Everyone around me thinks I'm fine because I'm smiling and acting normal. I don't want to worry my family, but honestly, I'm getting tired of pretending. How do I tell them, or should I just deal with it quietly on my own? Hi, भाई आपने जो लिखा है ना, frankly एक बात बताऊँ, मुझे भी एक stage of life में ऐसा हुआ था for some time. And I don't want to sound like मैं भी इसी में थी या मुझे भी है, and therefore undermine what you're going through. But I do want to tell you that कभी कभी हम ना स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा दिमाग में ले लेते हैं. So first of all, thank you for writing this. And please remember, जब हम mentally struggle करते हैं ना, it's not weakness. And आपको ये पूरी की पूरी सिचुएशन को अकेले, यू डोंट रियली हैव टू कैरी इट ऑल बाय योरसेल्फ। व्हाट यू डिस्क्राइबिंग, रेस्टलेसनेस, स्लीपलेस नाइट, शेकिंग हैंड्स, दीज आर साइंस दैट योर माइंड एंड योर बॉडी आर आस्किंग फॉर हेल्प। साइलेंस से कुछ नहीं होगा। एंड यू डोंट हैव टू टेल योर इंटायर स्टोरी ऑल एट वंस टू एनीबॉडी, ओके? छोटी छोटी चीजों से शुरू करो, मे बी विद वन ट्रस्टेड पर्सन इन द फैमिली एंड वन ऑनेस्ट आंसर। I haven't been feeling okay lately. बस इतनी सी बात कह दो किसी से, that's enough to begin. And if possible, please also consider speaking to a mental health professional. इसमें कोई stigma नहीं है, not आज के जमाने में. All you need is open your heart to somebody who you can just trust without feeling the fear of being judged. उससे बहुत फर्क पड़ता है। Support is necessary, not optional. यही सोच के आप ये बस अपने दिमाग में रखो that you deserve help, not just survival. अपना ध्यान रखो, और अगर हम आपके लिए कुछ और भी कर सकते हैं तो थोड़ा सा खुल के बताओ क्या दिमाग में है आपके जो कि आपको परेशान कर रहा है। Alright, Radio Masti 24/7 पर ये अगला गाना सिर्फ आपके लिए। It's Dear Masti Dil Se with Renuka. Don't be stressed. Ye jo body bata rahi hai na, it needs some help. So talk to someone.

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर,
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी क्या बात जी,
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर।

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं डियर मस्ती दिल से ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। और बिल्कुल थोड़ी देर पहले आपने रेणुका को सुना और आपकी अंतरा यहाँ पर पहुंच चुके हैं क्योंकि उसकी बारी है एक और लेटर आपके सामने बिल्कुल पढ़ने की। आर यू वन ऑफ दोज पीपल जिनको नो बोलना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है? अगर हाँ तो मुझे ऐसा लगता है आप इस लेटर से डेफिनेटली रिलेट कर पाएंगे। सो लेट्स रीड हमारा अगला लेटर। डियर मस्ती, हाल ही में मैंने एक नया डिपार्टमेंट जो है उसको ज्वाइन किया, मेरी ही चॉइस थी, पर अब मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ। मुझे लगता है कुछ लोग मुझे हर वक्त डोमिनेट करते हैं और मुझे समझ में ही नहीं आता कि उनको नो कैसे बोलूं। रोज घर वापस आता हूँ तो अच्छा फील नहीं होता और अब तो वापस जाने का मन भी नहीं करता। बट ये चॉइस तो मैंने खुद ही ली थी ना, अब समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। यू नो आई मीन कई बार यू नो हम लोग इस लाइफ में ये सारी चीजें बिल्कुल फेस करते हैं, बट ये एक ऐसे इंसान की तरफ से जवाब आ रहा है, दैट्स मी, जिसको पहले नो बोलना नहीं आता ही नहीं था, मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था सच में। और फिर एक दिन मुझे रियलाइज हुआ कि इस सवाल का जवाब कितना सिंपल है, नो अगर बोला नहीं जाता तो नो बोलना सीख लो, क्योंकि हमारा हार्ट और माइंड ना कभी कभी क्लियरली रेड अलर्ट जो है दे देता है, ये तुम्हारा काम नहीं है, दिस इज नॉट ओके, व्हाई शुड यू डू दिस। और उस वक्त आप अपने आप को अगर इग्नोर करते हो, दैट इज नॉट ओके। यू कैन नॉट कीप एवरीवन हैप्पी ऑल द टाइम, एक्सेप्ट दैट। ब्लैक कॉफी का भी अपना ऑडियंस होता है, सबको पसंद आना जरूरी नहीं होता है। और जब आप दुनिया को ये दिखाते हो कि दीज आर माई बाउंड्रीज एंड आप अनअपोलोजेटिक होते हुए उसको कंटिन्यू रखते हो कंसिस्टेंटली, इनिशियली लोग ये चेंज देखकर यही सोचेंगे कि अरे इसको क्या हो गया, ये ना क्यों बोल रहा है। ऑनेस्टली आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल खुद भी लगेगा, बट इवेंचुअली आप रियलाइज करोगे दैट दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वाज मिसिंग। देखो आपके हाथ में क्या है, मेहनत करना, सीखना, ग्रो करना। जब आप अपने यू नो उस डिपार्टमेंट को जब आपने चूज किया था तो एक रीजन तो रहा होगा ना, वापस से उस रीजन को याद करिए और फिर फोकस ऑन योर साइड ऑफ द ग्रास और उसे ग्रीनर बनाने की कोशिश करें। एक और प्रैक्टिकल बात बोलूं, जो लोग डोमिनेट करते हैं ना वो कई बार सक्सेसफुल इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है दैट दे कैन। सो लाइन ड्रॉ करो, जहां जरूरत हो नो बोलो, पर गुस्से से नहीं, शांति से, क्योंकि कभी कभी सबसे पावरफुल मैसेज वो होता है जो आप बहुत कामली देते हो। एंगर यूजुअली सिचुएशंस को और मैसी सा बना देता है, क्योटिक बना देता है। और जब मैं खुद को आपकी सिचुएशन में रखती हूँ तो मुझे पर्सनली यही फील होता है। बट एट द सेम टाइम हम सब बहुत डिफरेंट भी है, राइट, वी आर ऑल डिफरेंट पर्सनैलिटीज। तो मैं ये नहीं कह रही कि एग्जैक्टली मेरी तरह करो, बस इससे एक फ्रेश एंगल की तरह जो है देखो और फिर अपने तरीके से समझो कि आप इसमें क्या कर सकते हो।

0: ये जिंदगी का सफरनामा है दोस्त, ये सारी चीजों को हैंडल करते हुए, सरवाइव करते हुए ही आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। दैट इज हाउ वी विल ग्रो स्ट्रॉन्गर एंड बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ। रेडियो मस्ती 24/7 लाइफ पर स्टे ट्यून्ड टू डियर मस्ती दिल से।
1: This is Radio Masti 24/7 Live, the only local connect with global expat Indians. Anytime, anywhere.

0: ये रात तो अपनी है पर एक ख्याल किसका है।
1: तुमको लेकर
0: ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है।
2: मुझे चांद पे ले चलो।
0: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बनके रात के हम सफर हर रोज 11 बजे। ट्यून इन टू

ब्रेक से पहले हमने एक चिट्ठी पढ़ी थी, बहुत ही प्यारी सी चिट्ठी, थोड़ी लंबी चिट्ठी, जिसमें दिल की क्या क्या बातें लिखी हुई थी फ्रॉम अ वरिड वाइफ। एंड ये टाइम है जब हम लाते हैं द एसेंस ऑफ डियर मस्ती दिल से। जी हाँ, आपकी बात को समझ के, हर तरह से सोच के आपके लिए एक छोटा सा एडवाइस या डायरेक्शन। डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। आपसे एक बात कहूं वरिड वाइफ, कि आपकी चिट्ठी जो है ना, एक सिचुएशन नहीं है, एक पूरी जिंदगी की कहानी है। 45 साल एक इंसान ने सिर्फ काम नहीं किया, जिम्मेदारी निभाई है अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए और आपके लिए। अपनी एजुकेशन छोड़कर, अपॉर्चुनिटीज छोड़कर, लेकिन कभी फर्ज नहीं छोड़ा। और ऐसे इंसान के लिए रिस्पेक्ट और डिग्निटी बेसिक होनी चाहिए। जो आप डिस्क्राइब कर रहे हो वो सिर्फ टफ जॉब नहीं है, वो एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, जहां पर हेल्थ इंपैक्ट होने लगे तो वो सिर्फ करियर का डिसीजन नहीं रहता, वो लाइफ का डिसीजन बन जाता है। मैं आपको एक बात ऑनेस्टली बोलूं, इतने सालों की लॉयल्टी के बाद भी अगर एक इंसान को रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, तो शायद प्रॉब्लम उनमें नहीं है, सिस्टम में है। लेकिन आपका डिलेमा भी उतना ही रियल है, एक तरफ हेल्थ, एक तरफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी और बीच में पूरी फैमिली। और इसीलिए शायद यहां ईदर और इज नॉट द आंसर, बट द आंसर इज हाउ। क्या ये पॉसिबल है कि आप दोनों मिलकर एक ट्रांजिशन प्लान बनाएं? आपके बच्चे अब वर्किंग हैं, शायद उन्हें प्रोटेक्ट करते करते आपने उन्हें इन्वॉल्व करना थोड़ा डिले कर दिया, बट मे बी नाउ इज द टाइम एक फैमिली कॉन्वर्सेशन होने का वक्त, नॉट एज अ बर्डन बट एज अ शेयर्ड रियलिटी। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपके हस्बैंड ने पूरी जिंदगी सबके लिए खड़े रहकर गुजारी है, अब वक्त है कि वो खुद के लिए भी खड़े हों। रिस्पेक्ट के लिए बिल्कुल, उसके बिना काम नहीं, और हेल्थ के बिना तो जिंदगी नहीं। दोनों का कॉम्प्रोमाइज बहुत महंगा पड़ता है और पड़ सकता है। आप दोनों ने इतनी स्ट्रॉन्ग जर्नी इकट्ठा कंप्लीट करी है कि ये फेज भी निकल जाएगा, लेकिन इस बार थोड़ा सा फोकस उन पर भी होना चाहिए जो इतने सालों से सबका सहारा रहे हैं। तो मैं इतना बताना चाहूंगी कि एक बाउंड्री ऑन द करेंट जॉब, जो कि एक इमीडिएट स्टेप, जस्ट कीप द कम्युनिकेशन इन ऑफिस स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल। हो सके तो नॉन जॉब या पर्सनल टास्क को मना कीजिए और डॉक्यूमेंट करिए कौन सी डेट्स पर क्या हुआ था, कन्फ्रंटेशन के लिए नहीं, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए। और शायद ये छोटा सा शिफ्ट जो है ना, वो डेली स्ट्रेस भी कम करेगा। और एक एग्जिट टाइमलाइन बहुत जरूरी है, जहां पर आपके हस्बैंड ये बोलें कि अब मैं 3 से 6 महीने में एग्जिट करूंगा, आई टॉलरेट अंटिल आई कांट, इस बात से हटके। एंड देन ऑफकोर्स अपने घर पे अपनी मंथली हाउस होल्ड रिक्वायरमेंट्स, अपनी सिचुएशन और टेम्पररी कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द चिल्ड्रन, ये सारी बातें इंक्लूड कीजिए उनको एज एडल्ट्स, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। पार्शियल इनकम, रिड्यूस्ड एक्सपेंसेस, ये सारी चीजें करते करते मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि अगर हेल्थ इश्यू रहा, इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ, जिसकी वजह से वो निकल चुके ऑफिस से 2 बार, इट्स ऑलरेडी कॉस्टिंग मोर देन इट्स गिविंग, सो इट इज टाइम टू एक्ट। इसके आगे भी ऑफकोर्स हम आपके साथ रहेंगे। इफ यू हैव अ फॉलो अप क्वेश्चन, प्लीज डू राइट टू अस, रेडियो मस्ती 24/7, दिस इज रेणुका एंड इट्स डियर मस्ती दिल से। डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवघर, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085657।

0: पहुंचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
3: चेक इट आउट
4: डियर मस्ती दिल से बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
0: जितनी अच्छी तरह से हमें यह पता होता है कि किसी इंसान में हमें क्या अच्छा लगता है उतनी ही अच्छी तरह से हमें ये भी मालूम होता है कि हमें क्या बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। Welcome back to Radio Masti 24/7 Live Show है हमारा Dear Masti दिल से और अंतरा आपसे। जी हाँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ। हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स, एक सवाल पूछना चाहती हैं। What is that one thing which is a big no for you in a person? वो एक चीज जो देखते ही आपको रेड फ्लैग का एहसास हो जाता है और आप फील करते हो नोप, दिस इज वन थिंग विच रियली डिसअपॉइंट्स मी इन दिस पर्सन। एंड इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी किसी का एटीट्यूड, बैड हाइजीन, पीपल हु फ्लॉन्ट देमसेल्व्स वे टू मच, बहुत शो ऑफ करते हैं, या फिर वो लोग जो हर वक्त सिर्फ खुद ही की बातें करते रहते हैं, यू नो, टू मच ऑफ देमसेल्व्स। होता है ना, हम सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं। एंड इंटरेस्टिंगली, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम और क्लियरली ये समझने लगते हैं कि हाँ, ये वाली बात तो डेफिनेटली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। जैसे मुझे पर्सनली वो लोग बिल्कुल नहीं समझ में आते हैं जो ग्रुप में किसी और का मजाक उड़ाते रहते हैं और फिर ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे उन्होंने कोई बहुत ही ज्यादा फनी या बहुत ही अनोखी और अमेजिंग बात कर दी हो। यू नो व्हाट आई मीन, दिस इज सच अ पुट ऑफ फॉर मी, लाइक बिग नो। I do not entertain these kind of people. क्योंकि honestly, जब तक आपने किसी और के shoes में walk नहीं किया, तब तक शायद हमें थोड़ा careful रहना चाहिए कि हम किसी को publicly embarrass ना करें। और कई बार rumors भी ऐसे ही बनते हैं, जब लोग ये समझ नहीं पाते what to say and how to say it. So that was mine. Now I want to know yours. That what is that one thing which is a big no for you in a person? हमें लिखकर भेजिए 9151896 पर। डियर मस्ती दिल से डेफिनेटली कंटिन्यूज ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On मस्ती मीडिया नेटवर्क, we're opening a safe space. Dear मस्ती, दिल से, जहाँ आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: वेलकम बैक टू डियर मस्ती दिल से। मैं हूँ आपकी अंतरा, बिल्कुल यहाँ पर आपके साथ। और जब तक आप हमारे थोड़ी देर पहले पूछे गए क्वेश्चन के बारे में सोच रहे हैं और हमें अपने आंसर्स लिख रहे हैं, तब तक चलिए एक और लेटर की तरफ बढ़ते हैं। डियर मस्ती, हम 3-12 साल से दोस्त हैं, पर रिसेंटली कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से मेरे दोनों फ्रेंड्स अब एक दूसरे से बात नहीं करते, और दोनों ही एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं किसी एक की साइड लूं, पर मैं चूज नहीं करना चाहती। मैं एक को चूज करके दूसरे को खोना भी नहीं चाहती। ये कैसी कॉम्प्लेक्सिटी है? ओके, सीधा डाइविंग इनटू इट। डियर लिसनर, ये होता है जब फ्रेंडशिप में 3 लोग होते हैं, ओके? तीनों अलग अलग पर्सनालिटीज, 3 अलग तरह के इमोशंस, और फिर वक्त के साथ हम सब भी तो चेंज हो जाते हैं, राइट? बड़े हो जाते हैं। जब हम यंगर होते हैं तब सिचुएशंस को यार जाने दो और सिर्फ एक मिठी कर लो और कटी हो गया, इससे ही बात जो है बन और बिगड़ जाती थी। फियरलेस, एकदम सिंपल, राइट? बट जैसे जैसे हम बड़े होते हैं चीजें और इमोशंस कॉम्प्लेक्स होने लग जाती हैं। लेकिन यू नो व्हाट, मुझे ऐसा लगता है आपने अपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया है। यू डोंट वांट टू चूज, एंड ऑनेस्टली किसी को भी ये हक नहीं होना चाहिए कि वो आपसे फोर्सफुली साइड चूज करवाने को बोले। अगर आप चूज नहीं करना चाहते हैं तो मत करो। आप दोनों के साथ ही वैसा बिहेव करिए जैसा नेचुरली आप करना चाहती हैं। Because according to me, their issue is theirs to solve. सबसे पहले तो, not yours. हाँ, अगर कभी आपको ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में बात करवा सकती हैं या थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करवा सकती हैं, then maybe sure, give it a try. Because इतनी जब पुरानी दोस्ती होती है, we have to, right? But not at the cost of your own peace. कभी कभी लाइफ में हमें डिफिकल्ट चॉइसेस लेनी पड़ती है, और डिफिकल्ट होने का ये मतलब नहीं है कि वो गलत है। और मैं पर्सनली एक चीज बहुत स्ट्रॉन्गली मानती हूँ, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। तो ऑल यू कैन रियली डू इज दोनों को कामली ये बताओ कि आई डोंट वॉन्ट टू चूज एनी साइड, है ना? और इसको कहने में, एंड इट्स आल्सो अनफेयर टू एक्सपेक्ट यू टू डू सो। सो उन्हें एक चांस जरूर दीजिए कि वो बात करके चीजें सॉर्ट आउट करें, और अगर उसके बाद भी चीजें सेम रहती है तो फिर आप दोनों के साथ ही अपनी फ्रेंडशिप वैसे ही रखो जैसे आप रखना चाहती हैं। बिकॉज इफ दे हैव मेड अप देयर माइंड अबाउट देयर चॉइसेस, देन यू शुड मेक योर्स टू, इजंट इट? एंड मे बी दिस टाइम चूज योरसेल्फ। होप दिस हेल्प्स। यह डियर मस्ती दिल से, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। और ये दोस्ती, मतलब ये दोस्ती वाला गाना, एक्सपेक्टिंग ऑल द गुड थिंग्स फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर यू, या गोज आउट टू यू।

हम इंसान इतने खूबसूरत चीज हैं कि हम सामने वाले की अच्छी चीजें एक बार कॉपी करें ना करें, उनकी कमियां उनसे ज्यादा बेटर तरीके से कॉपी कर लेते हैं। आई डोंट नो हाउ। सो हेलो हाय, मैं आरजे अनुपम, डे और मस्ती दिल से शुभ्रा आपके साथ। कॉपी पेस्ट करना भी एक कला होती है। हाँ, वो कहते हैं ना, नकल के लिए भी अक्ल की जरूरत होती है, राइट? फिलहाल मेरे हाथों में जो लेटर है उसमें क्या लिखा है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। जिन्होंने ये लेटर मुझे भेजा है, उन्होंने कहा है कि उनके पेरेंट्स के बीच बहुत कॉम्प्लिकेशंस रही हैं और आज भी है। इन बातों को इन्होंने बचपन से इतना ज्यादा ऑब्जर्व कर लिया है कि इनका खुद अपनी लाइफ में कोई पार्टनर रहने का मन नहीं करता, मतलब पार्टनर चूज करने का मन नहीं करता, तो इन्हें अकेले रहने का मन है अपनी लाइफ में। तो क्या मुझे ये स्टेप लेना चाहिए? सो देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि ये जो रिश्ते होते हैं ना, रिश्ते ये हमारे हाथ में होते भी हैं और नहीं भी होते हैं। जितनी भी वाइजली अपने लाइफ पार्टनर को चूज कर ले, हमें नहीं पता होता है कि आगे जाके क्या होगा। फिर जो होता है ना, वो किस्मत में लिखा होता है। एंड डेफिनेटली आप जब कोई डिसीजन ले रहे हैं तो बहुत ही वाइजली लीजिए, और वो कहते हैं ना, स्लोली एंड स्टेडली लीजिए। एनीवेज, आपकी फैमिली में एक अलग सिनेरियो चल रहा है और सालों से आपने वही चीजें देखी हैं, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जीवन भर अकेले रह जाएं। मैं नहीं चाहती कि आप जब अपनी 50 की एज क्रॉस कर जाए तो उसके बाद आपके मन में ये रिग्रेट निकल कर आए कि वक्त रहते अगर मैंने भी अपने लिए एक सही पार्टनर ढूंढ लिया होता तो आज ये लाइफ जो है ना, हम दो लोग सेलिब्रेट कर रहे होते आपस में। वो सारी खूबियां ढूंढिए जो आपको चाहिए, और जब तक वो बेस्ट पार्टनर ना मिले ना, तब तक अपनी लाइफ में सेटल मत होइए। जस्ट गो स्लो एंड स्टेडली, जस्ट लाइक दिस सॉन्ग।

0: बिल्कुल, मैं आरजे नूपुर मस्तियों के साथ बनी हुई है डियर मस्ती दिल से शो पर।
1: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.

0: पहुंचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
2: चेक इट आउट।
3: अच्छा सुनो जरा ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा
4: हाँ जी जी
3: आधा kg मसूर दाल
4: जी जी
3: काजू किशमिश ओ हाँ अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं
4: जी जी
3: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो
4: अरे डार्लिंग व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर
3: क्या
4: जी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोर स्टेप
3: वाजी क्या बात जी
4: ऑर्डर टुडे फ्रॉम GGMart योर पर्सनल ग्रोसर।
5: इट्स टाइम फॉर आवर नेक्स्ट लेटर। मैं ये नहीं कहूंगी कि ये लेटर हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मैं ये कहूंगी कि जिंदगी में ऐसी सिचुएशन बस इन चिट्ठियों से जो बार बार आती हैं इस टॉपिक को डील करते हुए वेल पता लगता है कि देर आर लॉट ऑफ पीपल गोइंग थ्रू द सेम एंड वी आर नॉट अलोन। है ना अच्छा लगता है ना ये सुन के कि भाई हम अकेले नहीं हैं जो इस दौर से गुजर रहे हैं, बहुत से लोग हैं जिनके दिमाग में ये परेशानी है, तो चलिए साथ में मिलकर डील करें। नो फिल्टर्स नो जजमेंट जस्ट योर लेटर्स। डियर मस्ती दिल से हाय मस्ती, लेटली आई फील कंप्लीटली लॉस्ट। सब लोग लाइफ में आगे बढ़ते हुए लगते हैं, करियर रिलेशनशिप गोल्स एंड हियर आई एम स्टिल ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम इवन डूइंग। समटाइम्स इट फील्स लाइक आई एम जस्ट एग्जिस्टिंग नॉट रियली लिविंग विद एनी पर्पस। आई एम स्केर्ड ऑफ मेकिंग रॉन्ग डिसीजन स्केर्ड ऑफ फॉलिंग फेलिंग एंड मे बी बिकॉज ऑफ दैट आई एम नॉट टेकिंग एनी डिसीजंस एट ऑल। ऑनेस्टली आई फील क्लूलेस। How do people figure out what they want from life? And what do you do when you feel like you're standing at the edge, too scared to move forward? Hey, मैं क्या बोलूँ आपसे seriously? पता है? Again, अगर ये कहूँगी कि कभी-कभी मुझे भी ऐसा लगता है, तो बहुत cliche हो जाएगा। इसलिए I'm not going to say that। लेकिन आपका ये clueless feel करना ना एक ऐसी feeling है कि कभी-कभी हम एक crossroads पर अगर खड़े हो जाते हैं, समझ नहीं आता ज़िंदगी को क्या कर रहे हैं हम, क्या नहीं कर रहे हैं। But इसका जवाब है ना मेरे पास। इस खुशी भरे गाने से, क्योंकि धुरंधर हम सबके अंदर बसता है, तो बताती हूँ इसका जवाब। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ डीप ब्रेथ बिकॉज मोर पीपल फील दिस वे देन यू रियलाइज। द प्रेशर टू हैव लाइफ फिगर्ड आउट हैज बिकम सो लाउड दैट एनीवन हु फील्स कंफ्यूज्ड स्टार्ट्स थिंकिंग दे आर फेलिंग। बट कंफ्यूजन फेलियर नहीं होता, समटाइम्स एक साइन होता है दैट यू आर ग्रोइंग आउट ऑफ द ओल्ड वर्जन ऑफ योर सेल्फ एंड यू हैवंट डिस्कवर्ड द न्यू वन येट। और इसीलिए उसके बीच की जो सिचुएशन होती है ना, वहां हम कंफ्यूज नजर आते हैं। पर्पस ऑनेस्टली एक बात बताऊं, मोस्ट पीपल डोंट सडनली फाइंड इट वन मॉर्निंग। बनाते हैं अपना पर्पस धीरे धीरे, छोटे

0: अच्छा, डेली डेली लाइफ में हम बहुत लंबी सी टू डू लिस्ट बनाते हैं कामों की, लेकिन कभी संडे वाले दिन आपने खुद को पैम्पर करने की टू डू लिस्ट बनाई है? ना ना ना ना, इस डायरेक्शन में तो आपने सोचा ही नहीं है। अरे अरे अरे अरे, सो मैं आरजे नुपुर डियर मस्ती दिल से शो पर आपके साथ है। अच्छा, मैं एक फॉर्मूला को बहुत अच्छे से एप्ट करती हूँ, वो ये है कि जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे ना, तब तक आप किसी से भी, आप अपने पेट से भी प्यार नहीं कर सकते। यू हैव टू लव योरसेल्फ बिफोर, जिसके बाद पूरी दुनिया शुरू होनी चाहिए, राइट? तो चलिए, हफ्ते में एक दिन जो आपका एकदम रिलैक्स डे होता हो, चाहे सैटरडे हो, संडे हो, मिड वीक हो, यार आज का दिन ट्यूजडे ही क्यों ना हो, यार एक दिन सिर्फ सेल्फ पैम्परिंग कर रखना चाहिए। यू नो व्हाट, पिछले 2 से 2.5 महीने की मेरी प्रैक्टिस है, ओके? हफ्ते का या 15 दिन का एक दिन ना मैं खुद को दे रही हूँ। मतलब खुद को देने का मतलब है मैं वो सब कर रही हूँ जो मुझे करना पसंद है, वो चाहे वॉक पर जाना हो हेडफोन लगाकर, वो चाहे अकेले लंच डेट पे जाना हो, वो चाहे अकेले कोई मूवी एंजॉय करना हो, वो चाहे घर की एकदम होता है ना डस्टिंग वस्टिंग करके एकदम घर को सॉर्टेड कर देना हो, वो चाहे घर वालों को या हर एक सिबलिंग को वीडियो कॉल करके बात करना हो। तो ये सेल्फ लव डे हमें खुद क्रिएट करना पड़ेगा। इफ यू आर अ हाउस मेकर, तो आपको अपने घर का जो हिस्सा प्यारा हो वहां पे टाइम स्पेंड करना है। सो व्हाट यू लव द मोस्ट, डू इट इन अ मैक्सिमम वे जब आपका वो सेल्फ लव डे हो। सो इससे आपके चेहरे को ना और आपके रूह को ना सबसे ज्यादा सुकून मिलने वाला है इस गाने की तरह।
1: मिला हूँ अब जो तुमसे, दिल को मेरे कसम से सुकून मिला।
0: बिल्कुल ऐसा ही सुकून रेडियो मस्ती 24/7 लाइव आपको देता रहता है एवरी ट्यूसडे 5 PM ऑनवर्ड्स डियर मस्ती दिल से शो पर।

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
1: आई लव यू रसना।
0: समोसा पैटीज, फूटी, लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards, only on Radio Mercy 24/7 Live.
2: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
3: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085657।

0: 10 का 20 10 का 20 10 का 20 10 का 20।
1: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा। मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Friday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rock star Renuka with the week's top chart busters. Musty Top 20, only on Radio Musty 24/7, the only live Bollywood radio across Southeast Asia since 2009.
2: Dear Musty, Dil Se. बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। डियर मस्ती दिल से, मुझे तो कभी कभी लगता है कि मुझे भी एक चिट्ठी लिखनी चाहिए यहाँ पर अनोनिमस, और मेरी टीम को पता नहीं लगना चाहिए कि वो मैं लिख रही हूँ, बिकॉज आई रियली रियली वॉन्ट समबडी एल्स टू थिंक मेरी सिचुएशन के बारे में कभी कभी, एंड टू गिव मी अ वेरी न्यूट्रल आंसर। डियर मस्ती दिल से, आज के लेटर्स बहुत पर्सनल थे। किसी ने अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में लिखा, किसी ने लाइफ में पर्पस लूज करने की शेयर करी फीलिंग अपनी, और किसी ने वर्क प्लेस में स्ट्रगल करने की, जहां लाउड और डोमिनेटिंग लोगों के बीच अपनी आवाज ही छोटी लगने लगती है। और शायद यही लाइफ का सच है, हम सब किसी ना किसी बैटल से गुजर रहे होते हैं, बस हर बैटल दिखाई नहीं देता है। कभी एंजाइटी, कभी सेल्फ डाउट, कभी लोनलीनेस, और कभी वो प्रेशर कि हमें हर वक्त स्ट्रॉन्ग दिखना है। लेकिन आज थ्रू योर लेटर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद आई। इट्स ओके टू नॉट हैव एवरीथिंग फिगर्ड आउट, यू नो। इट्स ओके टू आस्क फॉर हेल्प। इट्स ओके टू फील ओवरवेल्म्ड समटाइम्स। और सबसे इम्पॉर्टेंट, इट्स ओके टू बी ह्यूमन। थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग अस विद योर स्टोरीज, बिकॉज जब आप लिखते हो सिर्फ अपना दिल हल्का नहीं करते, शायद किसी और को भी ये एहसास देते हो कि वो अकेले नहीं है। कीप राइटिंग टू अस, दिस इज नॉट जस्ट अ रेडियो शो एनी मोर, लेट मी टेल यू, दिस इज अ स्पेस जहां हम सुनते भी हैं, समझते भी हैं। मैं हूं रेणुका और ये है डियर मस्ती दिल से। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, टेक केयर ऑफ योर हार्ट, है ना, एंड अ लिटिल एक्स्ट्रा केयर ऑफ योर माइंड टू। जाते जाते लेट मी टेल यू वेरी पॉजिटिवली, यू ऑल आर बोर्न टू शाइन। ये मैं नहीं, दिलजीत दोसांझ कह रहे हैं। Take care guys, bye for now.

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर,
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी क्या बात जी,
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर।

नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ भक्ति प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।

की पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

0: हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।
1: यास्क मुनि ने कहा है कि मंत्र के अर्थ से मंत्र की ध्वनि अधिक प्रभावकारी होती है। ध्वनि में भी यदि मंत्र का मूल बीज मंत्र हो तो उससे पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है। जिस मंत्र में बीज और शब्द दोनों का यथाविधि प्रयोग किया गया है, अतः समस्त रिद्धि सिद्धि, धन संपदा, संतति प्राप्त करने के उपायों में इस मंत्र का जाप, श्रवण, मनन बड़ा उपयोगी माना जाता है।

तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

0: जापान में रोती हुई औरतों को मिलते हैं हैंडसम हग करने वाले बॉयज।
1: हमारे यहाँ तो बस बेटा रो मत ये मिलता है, यहाँ मिलते हैं दो करारे थप्पड़। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।

0: हम भी वारे जाएं कि भाई क्या बात है, फ्राइडे फिर से आ गया है। आप लोगों की किस्मत कितनी जल्दी जल्दी खुलती है कि आपको मस्ती मैडनेस का शो मतलब एक हफ्ते में एकदम से अचानक से कितनी जल्दी आ गया। नहीं अंतरा, तुम्हें नहीं लग रहा?
1: दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: हाँ रेणुका, स्पेशली शी हैज स्टार्टेड लविंग फ्राइडेज फॉर सम रीजन, नॉट ओनली द मॉर्निंग्स बट शी हैज स्टार्टेड एंजॉयिंग द इवनिंग्स एज वेल।
0: जी जी जी बिल्कुल, अब मुझे लग रहा है कि हम बिल्कुल एक ही तरह से फील कर रहे हैं। हाँ, अब फ्राइडे शाम मजा आने लगा है वाकई।
2: भाई
0: गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, क्यों हमें मजा आना लगा है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मस्ती मैडनेस। जी हाँ, रेणुका और अंतरा है और गंदी बातें टोटली तैयार है ना
2: भाई। 15 मई आ गई रेणुका, डूड व्हाट्स हैपनिंग।
0: 15 मई
2: क्या चल रहा है?
0: सो मई वी स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज इन जस्ट अ लिटिल बिट, व्हाट डू यू से?
2: Yes, yes, we may.
0: शुरू करते हैं, बिल्कुल बढ़िया बात है। तो लेकिन उससे भी पहले यहाँ पर मोनिका इंतजार कर रही है, तो चलिए पहले मोनिका की बात सुनते हैं, उसके बाद। एक जिंदगी काफी नहीं है मस्ती मैडनेस सुनने के लिए, क्यों भाई, है कि नहीं?
2: कोई पूछ रहा था अभी हाल ही में इसी हफ्ते कि इतनी ज्ञान भरी बातें आप लोग लाते कहां से हो, like he literally wrote like that कि इतनी हर आपके पास ही ये सारी बातें कैसे आ जाती हैं।
0: बोलो बेटा, इसीलिए तो ट्रेनिंग हम देते हैं, लेते नहीं हैं। गुड मॉर्निंग
3: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवघर, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085 6577।

0: स्वागत है आपका। जी हाँ, बिल्कुल, एक जिंदगी काफी नहीं है और उसके बाद लेडीज वर्सेस रिकी बहल, ये दोनों गाने सुबह सुबह करके हम पहुंच गए हैं 7:14 पर। गुड मॉर्निंग।
1: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो।
2: वापस से कहना 7:14।
0: अगर तुम बांग्ला में सुनना चाहती हो तो 14 मिनट। देखिए, हम बड़े वर्सटाइल हैं, हमें बड़ी सारी भाषाएं आती हैं यहाँ पर, लेकिन इस समय नंबर 14 को कैसे बोलना होता है अलग अलग भाषाओं में, यही सुनना चाहेंगी हमारी अंतरा जी। वो भी फ्राइडे सुबह का शो है तो हम कैसे मना करेंगे।
3: Yes.
0: लेकिन यहाँ पर खबर ये है कि भाई, अगर आप कुछ लोगों को देखते हो अंतरा जी, जो पूरे टाइम पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन करते हैं, कभी चूमते हैं, कभी चाटते हैं, कभी चढ़ते हैं एक दूसरे पे पब्लिक में, है ना, मतलब आमतौर पर देखा गया है कि ऐसे लोग जो हैं वो अपने रिलेशनशिप में ज्यादा दिन नहीं रहते। फिर आपको ऐसा कभी एहसास हुआ कि नहीं?
2: ये कैसे, किस तरह की रिसर्च की गई है कि पीडीए करने वालों के रिश्ते नहीं चलते, ये क्या है?
0: नहीं,
2: क्या
0: पर है, बस सीरियसली तुम अपने आसपास देखो, ठीक है, जो लोग ज्यादा डिस्प्ले करते हैं कि अरे आई लव यू माय सोनू माय व्हाटएवर, राइट, इन पब्लिक एंड ऑल दैट, नॉर्मली उन लोगों के रिश्ते जरा ज्यादा लंबे चलते नहीं है, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो जो लोग चुप होके
2: नहीं, मैं आई हैव फ्रेंड्स जो कि जिनकी तो शादी वादी भी हो गई है, दे स्टिल बिहेव लाइक दैट। दो मतलब ऑफ कोर्स हम लोग जब वहां पे होते हैं उस एग्जिस्टिंग सिचुएशन में लगते हैं कि भाई मतलब why, मतलब this is not required, देख तो लो और get a room, something like that, but then they do and then yeah it gets cheesy as ever.
0: So एका चाय और लक्षणा तीरा नारथ, जो कि 2013 में जिन्होंने 58 hours 35 minutes लंबी किस करी थी थाईलैंड में, आपको याद होगा ग्लोबल अटेंशन, हमने ये खबर कुछ साल पहले बताई थी, तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर्स फॉर द लॉन्गेस्ट किस, भाई उनका सेपरेशन हो गया, सोए भी नहीं थे 58 आवर्स तक ये वो, हाँ तो होना ही था ना, यही तो मैं बोल रही थी कि जितना पब्लिक डिस्प्ले करोगे दिखाने के लिए, हमसे ज्यादा प्यार कोई नहीं करता एक दूसरे को, बस थोड़े टाइम के बाद इन्हीं का प्यार पहले खत्म होता है। क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गई?
2: My question is,
0: हाँ जी,
2: that do you have to be in that much of love to do something like that?
0: नहीं, ये love शब्द नहीं होता, ये record था, ठीक है, it was a very practical, हाँ,
2: it was a very very सोचा समझा हुआ decision कि सुन करना है,
0: हाँ, क्योंकि अगर आपको वाकई किसी से प्यार है तो ये longest kiss का, I don't think you need that tag, right?
4: You're tuned into Radio Masti 24/7 live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.

0: What an A. Oh, बहुत बड़ा वाला वो भी. Hello, happy Friday. मस्ती madness. जहाँ news भी होती है gastronomical.
1: भाई gastronomical news के साथ में यहाँ पर पहुँच गए हैं रेणुका रंथरा and of course this is मस्ती madness on 15th of May 2026. मई. क्या खबर है अंतरा, बताओ, तुम्हारी बारी है, बताओ.
0: हाँ जी भाई, एक इन्फ्लुएंसर है, इनका नाम है ग्रेसी बॉर्न.
1: हाँ.
0: अब नाम इसलिए बता दिया बिकॉज हो सकता है कि इसके बाद लोग जाके देखना चाहें कि व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट. सो ग्रेसी बॉर्न जो है शी इज अ वेरी वेरी कर्वी गर्ल, कर्वी. एंड सबसे बड़ा उनका कर्व जो है उनके जो पुट जो है ना वो काफी बड़ा है. नहीं, आई पुट थाइस
1: ओ लाइक द शोल्डर्स, मतलब ये आर्म्स, आर्म्स ऊपर वाले आर्म्स. अबे क्या होते हैं, क्या होते हैं,
0: नीचे जाओ, थोड़ा नीचे जाओ.
1: ओके,
0: जिस पे आप बैठते हो तशरीफ.
1: ओ अच्छा अच्छा, यू मीन द बट. ओके,
0: यस द बट, द पुट. तो वो जो है ये तो बहुत बड़ा है, लाइक बहुत ही बड़ा है, बहुत ही काफी.
1: ओके,
0: ठीक है. नाउ शी रिवील दैट शी पेज, उसकी एक पर्सनल असिस्टेंट रखी हुई है, $10,000 उसको एवरी मंथ एक बहुत ही प्राइवेट सर्विस के लिए उसको पे करती है.
1: अच्छा,
0: नाउ आस्क व्हाट इज द प्राइवेट सर्विस,
1: व्हाट इज द प्राइवेट सर्विस अंतरा.
0: टू हेल्प wipe her butt because she cannot reach there.
1: Oh my god. Hey, taali teri choti hai paranda tera la. Seriously, that's a medical problem, man. That's like huge. I mean, you know, in the west actually exercises karate hai sab kuch taki tumhare jo butt hai it becomes bigger because that's considered more sexy for women. But itni
0: ye sexy for, I don't know. So ye ho sakta hai wo fetish wala cheez ho, but this is not like sexy wala, because if you I'll also show you बात करने के बाद उसकी फोटो. इट इज नॉट सेक्सी वाला बिग, इट्स लाइक रियली बिग. मैं तो यही सोच रही हूँ कि बहन बैठती कैसे
1: है,
0: पहले ये बता तू बैठती कैसे.
1: ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, यू आर नॉट द राइट बिहोल्डर. That's all I can say.
0: Clearly, I am sure.
2: Hit us on the gram. It's Radio Musti 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musti 24/7 Singapore. Check it out.

0: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: For show timings, check out the Radio Masti app now.

0: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
1: आइए आइए, आपका स्वागत यहाँ पर रेडियो मस्ती 24/7 पर अंतरा एंड रेनुका। और अगली खबर मेरी तरफ से,
2: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो, दिस इज मस्ती।
3: बताए बताए क्या खबर लेके आई हैं आप।
1: क्रेजी दुनिया की क्रेजी खबरों में से एक और क्रेजी, क्लाउड चेजिंग। आप जानते हो कि आजकल इंस्टाग्राम और वायरल होने के लिए लोग कुछ भी करते हैं कि नहीं करते।
3: करेक्ट।
1: लेकिन अब एक पति जो अपनी पत्नी की बहुत ही ज्यादा प्रोवोकेटिव सोशल मीडिया प्रेजेंस से परेशान हो गया कि ये कैसे कैसे रील्स बना के डालती है यार, वो नहीं सुनती इसकी यार। तो उसने क्या कहा, उसने कहा नहीं, मैं डिवोर्स नहीं करूंगा तुझे, ठीक है, मैं तेरा पिंड दान कर दूंगा। मतलब बेसिकली हाँ, ही ऑल्सो वेंट नेक्स्ट लेवल। तो अगर वो प्रोवोकेटिव वीडियोस डालती तो भाई तू भी तो वायरल होने के लिए नेक्स्ट लेवल ही कर रहा है। सो यू नो व्हाट ही डिड, ही एक्चुअली वेंट और अपना पूरा सेक्रेड हिंदू राइट्स के हिसाब से ही रिवर में जाके ही एक्चुअली अपना गुस्सा दिखाकर ही स्पिटेड ऑन द गार्लैंडेड फोटो। वो फोटो लेके उसके ऊपर कर रहे, थूके मार रहा है उसके ऊपर अपनी बीवी की फोटो पे। और फिर उसके बाद वो जो फ्रेम है उसको रिवर में बिल्कुल नीचे करके डुबो के, एंड देन ही सेइंग मैं पिंड दान कर रहा हूँ अपनी जिंदा बीवी का, क्योंकि वो मेरी बात नहीं सुनती और ऐसे गंदे गंदे वीडियोज डालती।
4: हमरे बॉडी से
1: इसकी बॉडी से तो प्राण, मतलब मैं क्या ही बोलूं। व्हाट अ टच्चा थिंग टू डू, है ना।
3: अटेंशन ग्रैब करने के लिए रेणुका आजकल लोग कुछ किसी भी हद तक जाते हैं,
1: लाइक
3: हद
1: रियली।
3: एंड इट इज ऑल अबाउट सोशल मीडिया। ये मुझे कभी कभी इतना ज्यादा डराती है ये बात कि क्या है, जस्ट फॉर दैट फ्यू सेकेंड्स ऑफ फेम यू आर डूइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स।
1: हद हो गई, मेस्ड अप। बहुत ही दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि सोशल मीडिया का त्याग कर दो, ऐसे फोटो पे माला चला के थूको मत। व्हाट इज दिस,

0: सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है, तो एक केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
0: क्या
1: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाजी, क्या बात जी,
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 पर। जी हाँ, अगली खबर जो है हमारी वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अंतरा जी की शक्ल को देख के मैं बता सकती हूँ, शी इज गॉट समथिंग एक्साइटिंग टू शेयर विद अस एंड दिस इज मस्ती मैडनेस।
1: मस्ती मैडनेस जहाँ न्यूज भी होती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द मस्ती डिस्कवरी चैनल, जहाँ पर आज हम मधुमक्खी यानी कि बीज के मेटिंग लाइफ को थोड़ा सा और करीब से जानेंगे। वैसे ही हाल ही में आई फाउंड दिस पोस्ट इतना सही कि वो बना का बनना है तो मधुमक्खी के जैसे बनाओ, शहद बांटो, मीठा बोलो, बट कोई बात करे तो मुंह भी सुझा दो जाके उसका।
0: आई नो मेरा फेवरेट, हाँ मेरा फेवरेट जानवर या व्हाटएवर इंसेक्ट भी अब हनी भी हो गया है। बिल्कुल सही बात,
1: हनी बी, या ट्रू ट्रू। सो अपेरेंटली एंड इट्स एक्चुअली मतलब ये प्योर साइंस है, सो मेल यानी कि मर्द हनी बीज जो होते हैं उनके लिए सेक्स मतलब होता है मौत।
0: अच्छा,
1: व्हाई? बिकॉज व्हेन अ मेल मेट्स क्वीन बी के साथ ड्यूरिंग हिज लाइक वन एंड ओनली फ्लाइट, उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है ना,
0: उसके बाद
1: मेट करने के बाद इट एक्सप्लोड,
0: हाँ,
1: एंड इट जस्ट टियर्स आउट ऑफ द बॉडी, उसका बेली जो है बर्स्ट ओपन हो जाता है एंड ही ड्रॉप्स टू द ग्राउंड डेड। अगर वो बच भी गया इस सब करने के बाद भी, देन He is no longer needed and is removed from the hive as well.
0: हाँ, क्योंकि क्वीन सिर्फ एक ही बार करती है। मैं तो क्वीन के बच्चे अगर हो गए उसके साथ में तो बच्चे पूछे पापा का क्या हुआ, पापा फट गए बेटा है, फट गए,
1: फट गए,
0: माँ ने फाड़ दिया पापा को। I like it.
1: He had a paadu experience.
0: Totally. मतलब उसके बाद किसी लायक नहीं रहे बेटा, पापा फट गए, उसके बाद किसी लायक नहीं रहे। हाँ, तो भाई ये बड़ी इंटेलिजेंट बात करी आज अंतरा, बहुत ही हमें डिस्कवरी चैनल का आपने हमको इंट्रोडक्शन कराया, बहुत खुशी हुई इस बात से। तो इसके बाद क्या एग्जाम भी होगा या बस यही का चैप्टर पढ़ना है हमने?
1: ऑप्शंस देंगे, कमेंट बिलो व्हाट द सही जवाब।
0: क्या आप कभी कभी सोचते हैं कि आप हनी भी होते तो आपके साथ क्या होता? लेकिन उसका उसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप क्वीन बी के साथ एक पल बिता पाते और वो भी टोटली क्लोज एंड क्लोज, फटने से पहले। गुड मॉर्निंग,
2: यू आर ट्यून्ड इनटू रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.

0: और हमारे दूसरे घंटे में आपका स्वागत। जी हाँ, खबरें तो चलती रहेंगी, आफ्टरऑल हमारे पास भर भर के खबरें हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस बिल्कुल अलग होते हैं। सो अंतरा, अलाउ मी प्लीज टू गिव यू वन रियल लाइफ एक्सपीरियंस फ्रॉम अ वीडियो। जैसे वो आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग सम रील्स एंड ऑल दैट, राइट? सो आई केम अक्रॉस दिस वियर्ड, डोंट आस्क मी वो मेरे टाइमलाइन पर क्या कर रहा था, बट या आई केम अक्रॉस दैट, आई डू वांट टू शेयर विद एवरीवन।
1: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो, दिस इज मस्ती मैडनेस।
2: एंड आई एग्री विद यू ऑन व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट वी हैव ऑन आवर रील्स एट टाइम्स। आई अमेज मायसेल्फ बिकॉज़ क्यूरियोसिटी के चक्कर में मैं वहां जाती हूं और उसके बाद यार कहता है, ओह नाउ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस, लेट मी शो यू मोर।
0: एग्जैक्टली। सो पता नहीं इस एआई को लगा कि मेरी इंटेलिजेंस तो खत्म ही हो गई है जो इस तरह के वीडियो आने लग गए। अब देयर इज गाय सिटिंग ओके एंड टॉकिंग अबाउट आप मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हैं चीजें, ठीक है? मैनिफेस्टेशन के बारे में हर कोई पढ़ता है, मैंने भी पढ़ा होगा कभी। सो देन ही सेज जब आप फार्ट करते हैं, ठीक है, जब आप वायु निकालते हैं अपने शरीर से नीचे के जरिए, राइट, तो आप उस समय मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं और आप जिस इंसान के बारे में लेट मी फिनिश और आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं उस तक वो खबर पहुंच जाएगी और वो इंसान विद इन 24 आवर्स आपको कॉन्टेक्ट करेगा, ठीक है? नाउ आई साउंड लाइक वन ऑफ दोज बाबा जीज, ओके? सो नाउ इमेजिन, मैंने ना वो सिचुएशन के बारे में, अच्छा, और साथ में आपको एक मंत्र भी पढ़ना है, प्रिम प्रां ट्रम प्रीम प्रिम समथिंग, ओके? नाउ द पॉइंट इज यू आर अबाउट टू फार्ट, ओके? थिंक अबाउट इट, एंड उस टाइम तुम्हें वो आदमी को भी सोचना है किसको तुम याद करना चाहते हो, ठीक है? यू वांट दैट मैसेज टू रीच दैट पर्सन, प्लस यू हैव टू डू द मंत्र आल्सो, राइट? सो नाउ इमेजिन योर सिचुएशन, यू आर सिटिंग डूइंग रेडी टू फार्ट एंड उस टाइम अरे इसका नाम ले रहे थे, अरे उसे, हाँ, और वो फार्ट कितनी देर लास्ट करेगा यार, इट्स नॉट गोइंग टू लाइक गो ऑन एंड ऑन, राइट? सो यू हैव टू से द मंत्र, यू हैव टू से द नेम। इमेजिन तुम्हारे कितना स्ट्रेसफुल हो जाएगा उस टाइम पर।